इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

वेलकम बैक इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर। दोस्तों रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी बात का जवाब लॉजिकली देते हैं और सामने वाला आपसे इमोशनली बात करता है, तो ऐसे में अपने लॉजिक्स को जरा बैक सीट पर डालिए और सामने वाले के इमोशंस को अगर आप नहीं भी जवाब दे सकते उसके इमोशंस के साथ तो सिर्फ सुनिए। कभी कभी ना सुनना काफी होता है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, किस इमोशन से आपसे जुड़ा हुआ है, क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं अगर आप सिर्फ उसे सुनना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए उसके इमोशंस पर, उसकी केयर पर, उसके बिहेवियर पर, बिकॉज वो बंदा ना वो आपसे बहुत इमोशनली अटैच है और बहुत प्यार करता है। और उसी बंदे के नाम ही अगला ट्रैक भी है, ऐसे सुनिए एंड सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्बेन पर।

इट हैपेंस में सताक्षी के साथ आप हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और अगर आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने सब कुछ गंवा दिया है, जो हारा है, जिसने नुकसान देखा है, तो ऐसे इंसान को कभी दूर मत जाने दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि जिसने सब गंवाया है ना, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज उसे पता है कि खोना क्या होता है, उसे पता है कि किसी का नुकसान करना क्या होता है, उसे पता है कि किसी को तकलीफ देना, पेन देना क्या होता है। और ऐसा इंसान जो है वो आपके उस पेन का ख्याल हमेशा रखेगा, आपको कभी भी दर्द नहीं देगा और ना ही दर्द का हिस्सेदार बनने देगा। और ऐसे इंसानों के नाम फिलहाल ये अगला ट्रैक भी है, इसे एंजॉय कीजिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

सुबह, आई होप कि आपको ये याद दिलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि चाहे कुछ भी हो, सुबह की एक्सरसाइज नहीं स्किप करनी है, नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपको फिट तो रखती ही हैं, आपको लाइफ में आगे लेकर चलती हैं, लाइफ में आपका माइंड क्लियर रखती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि माइंड क्लियरेंस कैसे आता है, भाई जब बॉडी फिट होगी, बॉडी में पेन कम होगा, दर्द कम होगा, आप फ्रेश फील करेंगे, डिटॉक्स होगी बॉडी, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आप फोकस ज्यादा रह पाते हैं। अदरवाइज आप लाइफ में बहुत कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी एक इतना रहता है, आप फ्रेशनेस नहीं रहती आपकी बॉडी में, तो फिर आप ना कंफ्यूज ही रहते हैं। तो अगर लाइफ में गोल्स अपने क्लियर चाहिए तो बॉडी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है बॉस। ठीक है जी, आइए एक और ट्रैक सुनिए इसी बात पर हमारे साथ, और सुनते रहिए ठापंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

अच्छा, हमारी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से हुई है ना कि हमें हर कहानी का एंड जानना है, हर कहानी का। और इसीलिए आजकल ये नया वर्ड मार्केट में चल रहा है भाई, क्लोजर। ब्रेकअप के बाद क्लोजर बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हम ये समझ पाए कि जो हुआ उसका कोई मतलब था। क्योंकि हम डरने लगे हैं कि कहीं गलती हमारी तो नहीं है, हम ये ना समझें कि मेरी वजह से ही हुआ। देखा जाए तो क्लोजर मुझे तो लगता है भाई कि एक मिथ है। इसका, इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिंदगी रिश्तों को इस तरह पूरा ही नहीं करती है। ज्यादातर रिश्ते अधूरे ही खत्म होते हैं और वो अधूरापन ही सबसे बड़ा सच बन जाता है। सो इसलिए कह रही हूं कि क्लोजर अगर आप ढूंढने निकले हैं तो आपको और पेन मिलने वाला है। क्योंकि जिससे आप क्लोजर मांगने वाले हैं ना, वो सारा इल्जाम, सारा छीका आप पर फोड़ेगा, आपको आपकी कमियां बताएगा। यही दुनिया का रिवाज है, यही रीत है कि हम दूसरे को बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हैं। इसलिए जो खत्म हो गया उससे आगे निकलने का रास्ता सोचिए। उस क्लोजर को पाने के लिए, कहानी की एंडिंग को जानने के लिए जितना एफर्ट करेंगे आप उतना परेशान रहेंगे। सोचिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस, आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वेलकम बैक इसी कॉर ट्रैक के इस बार सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। जी हाँ, आपके साथ मेरी और आपकी कुछ खास बातें हो रही हैं। भाई ये सुबह की बातें जो हैं ये सूरज की रोशनी की तरह होती हैं। जैसे सूरज जब निकलता है तो पूरे दुनिया में रोशनी फैला देता है ना भाई। जिस तरफ निकले, जिस देश में निकले वहां पर उजाला यानी कि दिन, और जिस देश में ना निकले वहां पर अंधेरा यानी कि रात। तो बातें भी कुछ ऐसी ही हैं हमारी और आपकी, हमारे साथ की, कि लाइफ जो है वो उजाले और अंधेरे का मुझे लगता है संगम सा है। हाँ, कभी अगर जिंदगी में सब कुछ रोशनी से भरा है तो दूसरे पल ऐसा भी हो सकता है कि जिंदगी आपको रात दिखा दे। कई बार आप बहुत होपफुल होते हैं तो कई बार डिसअपॉइंट भी होते हैं। कई बार जिंदगी आपकी खुशियों से भरी होती है तो कई बार सैडनेस भी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। सो इसलिए लाइफ के इस केमिस्ट्री को समझिए, लाइफ के इस नेचर को समझिए कि भाई धूप छांव का संगम है ना, ये जिंदगी है, दिन और रात का मेल जो है ये जिंदगी है, और ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। चलिए इसी बात पर एक और ट्रैक एंजॉय कीजिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

सो भाई ये था इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और साथ। आज हमने बहुत सारी बातें शेयर की एक दूसरे के साथ, बहुत सारे किस्से और बहुत सादा जिंदगी को समझने की कोशिश की। लेकिन जिंदगी जो है ये पूरी तरह से कभी तो किसी को समझ में आ नहीं पाई है, लेकिन उसके बाद भी इसे समझने की कोशिश जो है वो जरूर जारी रहनी चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से कुछ खास बातों और जज्बातों के साथ हमारे इसी इट हैपेंस के सफर में। अब आज के सफर से सताक्षी लेगी इजाजत। हैव अ ग्रेट डे एंड इज ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आज संदेश अलग दराल से बन चुके हो ठेर सारिया गल्ला करन दा है साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जवड़ा शुरू हो चुके है जी। ते इना गल्ला दे दौरान असी पंजाबी गीतां दा तड़का इना नूं जरूर लगाउणा है ता तुसी बस जुड़ना है साडे नाल ते होर कुछ नहीं करना जुड़ना शुरू करो रेडियो बिस्वानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी ते bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आईडी है सरिया जेड़ा भी अपनाउणा चाहुंदे हो अपनाओ साडे नाल गल्लबात जरूर करो ते फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो मैं हुण वापिस आनी हूं उन्होंने समा थानू कले बिल्कुल भी नहीं छड़ के जाना इन्होंने सोने सोने गीतों इंजॉय करते रहो अपना फोन चक के साथ ना जुड़ो भी जरूर।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hunger Gordon. Shut away. Ek do gallan karniyan si. Thode zindagi vaste theek janiyan. Kyunki meri zindagi ch main cheezan sikhiya. Tuhanu dassni mera farz hai. Swear you take notes.

0: नमस्कार। हाँ जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101 एम ते जी आर चे संदेश शौलक दिनाल सिपाने हुए। देखो कुछ फिल्मा ना कदे कदे थिएटर्स विच अजियां लग जांदियां ने जिन्हां विच कोई वड्डा स्टार नहीं हुंदा पर फिल्म की कहानी अजे ही निकल के सामने आउंदी है कि तुसी उसनू देख सरप्राइज हो जाने हो। कपिल शर्मा टीवी दे सुपरस्टार पर बीते कुछ समय तो ना फिल्मा विच भी उन्हां दा मामला ठंडा पिया होया हैगा। उन्हां दी पिछली फिल्म किस किस को प्यार करूं टू धुरंधर के चक्कर विच फ्लॉप हो गई है। हुण कपिल दी नवी फिल्म दादी की शादी आई है ते जिसनू लैके सब दे मन विच एक सोच बन चुकी सी। फिल्म दादी की शादी का जद ट्रेलर सामने आया ना तो अजिहा लग्या सी कि मेकर्स ने पहला ही पूरी फिल्म की कहानी रिवील कर दी पर जद इस नू पूरा देखिया तो पता लग्या कि काफी सारिया चीजा सरप्राइज रखिया हुई ने। हुण इस दादी की शादी ने किस तरह की स्टोरी नाल सब नू इम्प्रेस किया वो सब कुछ तुहानू दस्सदी आ। पूरा रिव्यू दिनी आ पर पहला सुनो एक गीत।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com, the one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

वो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: House. मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्बेन 101 एम ते जी अच्छे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए। सब तो पहला तो दस दें कि दादी की शादी का पूरा खेल की है, ये जानना जरूरी है ना। सा देखो फिल्म की स्टोरी काफी सिंपल है। दिल्ली का रहने वाला टोनी कालरा यानी कि कपिल शर्मा 3 साल तो कुड़ी लभ रहा सीगा पर उसके व्याह नहीं हो रहा सी। उसके बाउची यानी कि योगराज सिंह अपने पोते दे लई कुड़ी लभण की काफी कोशिश करते हैं जो फाइनली उन्होंने कनिका आहूजा यानी कि सादे खातिब के रूप मिल भी जाती है। दोनों का रोका होने वाला हों उस वे कनिका की दादी विमला आहूजा यानी कि नीतू कपूर सोशल मीडिया के जरिए ऐलान कर दिंदी है कि वह व्याह करने वाली है। उतों ही कनिका की फैमिली का पैनिक मूड ऑन हो जाता हों। टोनी के बाऊ जी ने कुड़ी वालिया कह दिता है कि जेकर उन्होंने मां का विह होया तो उन्होंने पोता कनिका नाल विह नहीं कराऊगा। अजे विच सब अपनी मां विमला विह करन तो रोकण दे लई शिमला चले जाते हैं ना। उस टोनी भी अपने प्यार की नैया पार कराने के लिए पहुंच जाता है। परिवार की नामंजूरी के बावजूद दादी विमला ते उनके लवर कैप्टन आदि विष्णु रेड्डी यानी कि आर सरत कुमार ये है ने दादी दे दुल्हे ते व्याह करने का फैसला कर चुके होंगे ने। हुण की दादी की शादी हुंदी है जेकर हां तां की फिर टोनी अपना प्यार खो देगा। यह इस फिल्म का बेसिक प्लॉट है जिस विच काफी सारे ट्विस्ट सरप्राइज है ते काफी ज्यादा वधिया है ते इसलिए तुसी देखे जरूर। बाकी रिव्यू दसदी है तो कहानी दसती है थोनू छोटी जी पूरी जानने के लिए तो थोनू फिल्म ही देखनी पैनी है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हुए। देखो कहानी इसकी चंगी है ते कॉमेडी भी मजबूत है, मैं तुहानू पहला ही दस दिनी हां। हुण सब तो पहला जे गल करिए फिल्म दे पॉजिटिव पॉइंट्स दी, तां जिवें मैं पहला दस्सिया कहानी चंगी है। फिल्म दादी की शादी दी खासियत यही है कि इसकी कहानी बहुत वधिया तरीके दे नाल पेश की जा रही है। फैमिली वैल्यूज नूं लाफ्टर दे तड़के दे नाल मिक्स मैच करके दिखाने की कोशिश कई बार की गई है, पर ज्यादातर फिल्मां उस नूं उसे ऑडियंस तक चंगे उस नूं डिलीवर करन दे विच असफल हो जांदियां, चंगे तरीके दे नाल जिस तरीके दे नाल कहा जांदा है स्टोरी लिखी जांदी हुंदी है। पर कपिल शर्मा की फिल्म इस विच पूरे नंबर विच पास हो गई है। फिल्म दी जेड़ी कॉमेडी है कि है जबरदस्ती वाली नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती हैगी, बल्कि इसनु काफी नेचुरल रखा गया जिसनु देख के तुहानू सचमुच मजा आऊगा। हां जिथे अज दे समय विच कॉमेडी मतलब सिर्फ वल्गर सीन्स ते डबल मीनिंग जोक्स बन चुके ने, उस दे विचकार दादी की शादी दी कॉमेडी काफी साफ सुथरी ते फैमिली फ्रेंडली है। फिल्म दे विच ना सिचुएशनल कॉमेडी दा शानदार इस्तेमाल किया गया है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: Show mercy on it.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल से बने हुए हो। हुण एक्टर्स की गल करिए, देखो फिल्म विच काफी एक्टर्स का काम, सारे ही एक्टर्स का काम काफी नहीं, सारे दे सारे एक्टर्स का काम काफी वधिया है। कपिल शर्मा अजे लगता है कि मनो वो अपने पुराने फॉर्म विच आ चुके हैगे ने। उन्हां दे वन लाइन कॉमेडी पंच काफी मजेदार है, नाल ही नीत कपूर दादी दे रोल विच काफी स्वीट लग रही है। साउथ एक्टर आर सतकुमार ने भी अपने रोल नूं पर्दे दे चंगे तरीके दे नाल पेश कीता है। सादे खातिब नूं देख के तुहाडियां उन्हां तों नजरां ही नहीं हटणगियां क्योंकि उह फिल्म विच काफी सुंदर दिख रही हैगी है। उधर नीतू कपूर की बेटी रिधिमा कपूर जिन्हां दा इह बॉलीवुड डेब्यू भी है उस विच उह चंगे तरीके दे नाल खरी उतरी है। इस तों इलावा एक्टर दीपक दत्ता ते जसविनी जितेंद्र अदिति मित्तल सारे एक्टर्स सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं तो बहुत वधिया लगते हैं। पर हां क्रिकेटर युवराज सिंह दे पिता योगराज सिंह भी इस फिल्म विच है कि जिन्हां देख के तुसी पक्का सरप्राइज होने वाले हो, वो तुहानू एक अलग अवतार विच नजर आउणगे। कुल मिला के जेकर एक लंबे समय तो फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो दादी की शादी तुसी देख सकते हो। हाल दस दें इस बारे होर भी बहुत पॉइंट, पर पहला तुसी अगे सुनो।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हां जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 MTHR चे संदेश शौलक दे नाल से बने हुए हो। देखो म्यूजिक हैगा ना जिहड़ा वो हर फिल्म दी जान हुंदा है। अजकल तां म्यूजिक नूं तां पहलां ध्यान दे विच रख्या जांदा है क्योंकि गाने पहलां ही रिलीज़ कर दिते जांदे आ। ते इस फिल्म दी जे गल करिए ना, फिल्म दा संगीत पूरी तरह दे नाल थोड़ा दिल नूं छौण वाला नहीं लग्या, थोड़ा थोड़ा किते ना किते म्यूजिक है जिहड़ा वो फिक्का पिया नजर आया। कोई गाना थिएटर तो बाहर निकलन तो बाद ना याद नहीं रह रहा। तो कुल मिला के संगीत ने दिल नहीं जितया, बैकग्राउंड स्टोर भी कई जगह टीवी सीरियल वाली फील दे रहा सी जो इमोशनल सीन्स नू हल्का फुल्का बना देता है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.01 एम ते जी आर जे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। देखो सिनेमैटोग्राफी की गल करते हैं ना आप, जेकर फिल्म विच कुछ लगातार चंगा लगता है तो वह है इसकी सिनेमैटोग्राफी। शिमला दियां वादियां, मॉल रोड, रिज ग्राउंड, जाखू टैंपल नूं बेहद खूबसूरती दे नाल शूट किया गया। कई फ्रेम इन्ने शानदार ने कि कई बार लगता है कि कैमरा फिल्म की कहानी तो ज्यादा मेहनत कर रहा है। बिल्कुल सही, कहानी जिथे जिथे थकौंदी है ना उथे उथे शिमला अखा नूं ऑक्सीजन दिंदा है। इन्नी वधिया सिनेमैटोग्राफी है, इन्नी वधिया डायरेक्शन है, लाजवाब है। ते हुण गल आउंदी है कि फिल्म नूं देखिए या ना देखिए। जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा ना कि मेरे अकॉर्डिंग देखनी चाहिए, मैं हुण तुहानूं सारिआं दे रिव्यूज कट्ठे करके दिन्नी आ, दस्सदी आ देखनी आ नहीं देखनी, पर पहलां देखो ना ना सुणो ये गीत।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101.1 ते जी आरटी संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। स्वागत करन आ गई थोड़ा, पर स्वागत नहीं करना, बाय बाय कहने का वेला हो चुका है। पर इस तो पहला मैं जिम्मे दस्या कि देखना है या नहीं देखनी है इस फिल्म नु, तो दसदी हां। तो देखो दादी की शादी एक फैमिली फिल्म बन सकती सी, हैगी भी है, टॉपिक दमदार है, कलाकार भी चंगे है, इमोशंस की पूरी गुंजाइश है। तो जिम्मे मैं थोड़ा पहला किया ना कि वन टाइम वाच बहुत अच्छी हैगी है, तुसी फैमिली दे नाल जी इंजॉय करन जाना चाहते हैगे हो तो एक बार इस फिल्म नू तुसी जरूर देखो, है ना। तो फिर बना रो प्रोग्राम ते नालों नाल सानू मैसेज भी जरूर करदे रहा करो, कोई रिव्यू जानना चाहते हो ही दे दिया करना मैं तुहानू, तो जुड़दे जरूर रहा करो। रेडियो ब्रसोनी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, ब्रसोनी @ ब्रसोनी.com, जिहड़ा भी अपना साडा गल्ला पता जरूर करते रहा करो। बाकी गल करदे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: अपना घर खरीदना हो या बेचना हो, इंसान इमोशनल हो ही जाता है, क्योंकि घर से जुड़ी होती हैं ढेरों यादें।
4: पर अब डोंट वरी, क्योंकि फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स यू कैन कॉन्टेक्ट देव रियलिटी, पावर्ड बाय ऑक्सब्रिज प्रॉपर्टी ग्रुप।
1: जहां है जितेंद्र देव, हु इज अ हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस्ड एंड फुली लाइसेंस्ड एजेंट।
4: चाहे आप खरीद रहे हो अपना पहला घर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या फिर जरूरत हो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की, यू विल गेट द बेस्ट प्राइस नो मैटर यू आर सेलर और बायर। दे प्रेजेंटली हैव एन अट्रैक्टिव हाउस एंड लैंड पैकेजेस इन सदर्न एंड वेस्टर्न सबर्ब्स।
1: याद रखें, देव रियलिटी पावर्ड बाय ऑक्सब्रिज प्रॉपर्टी ग्रुप। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट जितेंद्र ऑन 04117980012। दैट्स 04117980012। Or you can visit his office at Cooper's Plains Shopping Center, 896 Boundary Road, Cooper's Plains. Mention Radio Briswani and you will have no marketing cost in selling or buying your property.
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 04706318 01। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
8: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
9: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
8: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
9: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
8: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
9: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
10: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
11: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Tanvire, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
1: That.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्शनिविया के साथ। मंडे का दिन और कैसा फील कर रहे हो आप सब। जी हाँ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ वाज योर मदर डे सेलिब्रेशन, कैसे आपने सेलिब्रेट किया मदर डे को, सब कुछ जानना है मुझे और आपको। सब कुछ शेयर भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। आपको तो बताइए, मैं हूं नोजी, आई एक्चुअली बिलीव दैट आई एम नोजी, बट अगेन मुझे मेरे लिसनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, मजेदार क्या चल रहा है, ये सब जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। सो आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको अपनी खुशियों में हमें भी एकदम हिस्सेदारी जो है वो देनी पड़ेगी। सो इसी के साथ आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। आपको तो बताइए, प्रोग्राम की शुरुआत होती है सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल के साथ, एक हेल्दी रिचुअल जो कि हमको हेल्दी रखने में हेल्प करता है मेंटली, फिजिकली, खासकर मेंटली। हमें फोकस्ड बनाता है, हमें स्ट्रेस फ्री रखता है और हमें काम भी बनाता है। मतलब ये जो शोर है, ये जो कियोस है इस दुनिया का, इससे हमें अछूता रखता है। और अगर हम मतलब इसके शिकार हो भी गए हों तो भी उससे निजात पाने में हमें हेल्प करता है। सो आइए सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है। ट्राई कीजिए, आपको भी होगा। और जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज की अगर आप शुरुआत करते हैं तो अगर लंबी गहरी सांसों यानी कि डीप ब्रेथ के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप उस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ आइए प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। और प्रोग्राम की शुरुआत होती है मजेदार गानों के साथ, तो थोड़ा सा सैया को मना लेते हैं जो कि शाये है। और आप लोग बोलोगे कि निव्या व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वेल वो तो आप गाना सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।

जी दोस्तों, और इसी के साथ हम जरा बात कर लेते हैं मौसम के बारे में, क्या कह रहा है वेदर, क्या कह रहा है टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी गपशप है हमारे पास करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अब मौसम के साथ, वेदर के साथ, क्योंकि वेदर और मौसम के बारे में हमें पहले पता चल जाए तो हम पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं अपने वीक डेज की। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर अगर अभी की बात की जाए तो 23.7 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर और 22.8 डिग्री सेल्सियस के करीब आपको फील हो रहा है। जी हाँ, वहीं रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में आप गिरावट देख पाएंगे और बारिश के चांसेस 60%। जी हाँ, चांसेस ऑफ रेन 60%, और ये मुझे दिख रहा है 6 बजे के बाद से। जी हाँ, 6 बजे के बाद से मुझे पूरी तरह से दिख रही है और काफी सारे इलाकों में होती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ये थोड़े इलाकों तक ही जो है वो रहेगी, काफी सारे इलाकों में मुझे दिख रही है और धीरे धीरे धीरे जो है वो ये आधी रात को बढ़ती ही जाने वाली है। इसी के साथ 60% चांसेस तो आज के लिए है, लेकिन अगर कल की बात की जाए यानी कि ट्यूजडे की बात की जाए तो अगेन बारिश के चांसेस है दैट टू 70% विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बट वेडनेसडे और थर्सडे को 90% चांसेस है विद 1 to 5 mm बारिश होने के चांसेस। जी हाँ, सो ये है बारिश के चांसेस और साथ में वेडनेसडे और थर्सडे को तो 90% है जैसे मैंने आपको बताया। सो ठंडक जो है वो बढ़ती जाएगी और ठंडक के बढ़ने के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भीगा भी आपको ये 2 से 4 दिन जो है वो लगने वाले हैं और उसके आगे भी इनफैक्ट मैं बारिश देख पा रही हूँ काफी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको बारिश से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। जी हाँ, कुछ इलाकों में तो फिर भी होने वाली है, जैसे कि आपको पता है नॉर्थ ब्रिस्बेन में कभी भी राहत नहीं मिलती है, जब भी बारिश का अंदेशा होता है वहां तो हो ही जाती है, वैसा ही कुछ यहां पर भी देखने को आपको मिल सकता है। सो अपने छाते और अपनी सारी नेसेसिटीज जो आपको बारिश में चाहिए होती है उनके साथ ही घर से बाहर निकलिएगा और ट्रैफिक का भी आपको चेक करना है, जहां से ट्रैफिक होगा वहां से ना निकलिए। पर ऑफकोर्स आज जो है वो आपके ट्रैफिक में फंसने के चांसेस कम है क्योंकि 6 बजे के बाद जो है मुझे बारिश होती हुई नजर आ रही है, वो भी थोड़ी कम होगी, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ने वाली है, लेकिन कल के लिए मैं काफी बारिश देख पा रही हूँ। सो या इसी के साथ बारिश के साथ एयर क्वालिटी भी है एकदम मजेदार, ये है मौसम का हाल। और आइए अब जरा चलते हैं सीधा, सुनाते हैं आपको एक बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा गाना श्रेया घोषाल की आवाज में।

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और दोस्तों, इसी के साथ अब सबसे पहले बात कर लें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। वेल ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं आपको पता होगा ही, कहीं ना कहीं आपको अंदेशा होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। लेकिन इनकेस आपको नहीं है अंदेशा, मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रही हूं आपकी फरमाइशों के बारे में, आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का खूबसूरत सा हिस्सा बनना चाहते हो अपने फरमाइशों के थ्रू, अपने डेडिकेटेड सॉन्ग्स के थ्रू, तो आपको करना क्या है, आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप हैरी पॉटर यानी कि डेनियल रेडक्लिफ के साथ बैठकर हैरी पॉटर देखोगे और आपको ये नहीं पता होगा कि डेनियल रेडक्लिफ जो आपके बाजू में बैठे हुए हैं वही हैरी पॉटर में हैरी का कैरेक्टर प्ले करते हुए आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जी हाँ, सो डेनियल रेडक्लिफ जिन्होंने हैरी पॉटर का कैरेक्टर प्ले किया है लेजेंडरी हैरी पॉटर मूवी में, उनका कहना है कि उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस यहाँ दिख रहा है जहां पर वो अपने बेटे के साथ हैरी पॉटर सीरीज देख रहे हैं और उनके बेटे को ये आइडिया भी नहीं है कि जो हैरी उनको दिख रहा है स्क्रीन पर वो हैरी उनके पिता यानी कि डेनियल रेडक्लिफ ही है। अब यहां पर हैरी पॉटर यानी कि डेनियल रेडक्लिफ ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि ये चीज कैसे हो रही है, आगे आने वाली जो जनरेशन है वो ऐसे ही हैरी पॉटर के साथ कनेक्ट कर रही है, उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली हैरी पॉटर किसने प्ले किया, क्यों प्ले किया और वो कौन है एक्टर जिसने इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर उतारा। उनको बस हैरी पॉटर यूनिवर्स इंजॉय करने में मजा आता है और उनको उसी में इंटरेस्ट है, उनको नहीं जानना कि कौन व्यक्ति है, किसने इसे प्ले किया, क्या किया। जी हाँ, सो यहां पर डेनियल रेडक्लिफ ये भी कहते हैं कि वो ऐसे ही इसे अभी कुछ वक्त तक रखना चाहते हैं। वो अपने बेटे के साथ हैरी पॉटर सीरीज देख रहे थे और वहीं पर ये पिक्चर जो है वो वायरल हो रही है ऑनलाइन, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि कैसे उनके बच्चा, उनका बेटा जो है वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय करता है हैरी पॉटर सीरीज को, बट देन अगेन ही डजंट नो कि उनके पिता ही द लेजेंडरी हैरी पॉटर है। सो यहाँ पर एक चीज जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज अब इसे ऑप्ट कर रहे हैं, वो अपने स्टारडम को अपने पेरेंटिंग पर हावी नहीं होने दे रहे, एंड आई थिंक इट शुड स्टे लाइक दैट, क्योंकि पहले का जमाना कुछ और होता था, पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा फील हो कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, राइट, मतलब ये क्या चल रहा है, ये हमारे माता पिता इतने बड़े स्टार हैं, यू नो व्हाट, इट कैन टेक अ टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ। सो अगेन ये आइडिया कि उनके बच्चों को दूर रखना है उनके स्टारडम से जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो समझदार नहीं हो जाते हैं, मुझे लगता है ये खुद बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन सच में डेनियल रेडक्लिफ यानी कि रियल लाइफ हैरी पॉटर यानी कि रियल हैरी पॉटर के साथ देखकर हैरी पॉटर सीरीज देखना, आई मीन हिज सन इज क्वाइट क्वाइट लकी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर हमें बताइएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ. बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज. तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश. टीज एंड सीज अप्लाई.
14: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ ट्रंप गवर्नमेंट कर चुकी है यूएफओ फाइल्स पब्लिक. जी हाँ, यूएफओ फाइल्स में से काफी फाइल्स पब्लिक की गई हैं ट्रंप गवर्नमेंट के द्वारा. और अब आप बोलोगे कि अब क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान. वेल, जो भी छुपाने की कोशिश कर रहा है वो इंसान, हमारा इंटरेस्ट यूएफओ फाइल्स में पूरी से है. यूएफओ फाइल्स, और ये फाइल्स दिखाती हैं कि कैसे बहुत सारी जगहों पर ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले थे और बहुत पहले से देखने को मिले थे. में एक इंसिडेंट जो है वो काफी वायरल हो रहा है और वो है अपोलो मिशन का, यानी कि 1972 में जो मून लैंडिंग मिशन हुआ था अपोलो मिशन, उसके दौरान भी जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्हें कुछ ऐसा दिखा था, उन्हें कुछ ऐसी ब्राइट सा ऑब्जेक्ट दिखा था उनके लूनर लैंडर्स के पास, जो कि एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था. जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से ही ये चीज शुरू हो गई थी. आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, ये तो हम लोगों को ऐसे भी पता है. मतलब अगर तुम हमें नहीं भी बताओगी तब भी हमको पता है कि जो एलियंस हैं वो रियल हैं. बट एलियन से रिलेटेड अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं लाया गया था, लेकिन फाइनली नासा और ट्रंप गवर्नमेंट ने जो है वो यहां पर ठान लिया. ऑफकोर्स उनको चीजें कवर अप करनी है, लेकिन जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको इससे फायदा हो गया क्योंकि उनको कुछ नया जानने को यहां पर मिल रहा है. जी हाँ, सो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसक्रिप्ट्स एंड इमेजेस जो हैं वो ली गई थी एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा. उन्होंने रिपोर्ट किया था एक अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट उनके लूनर लैंडर के पास, और ये अपोलो 17 जो कि 1972 का क्रू मिशन था मून के लिए, तब का ये जो है ये इंसिडेंट है. उन्होंने किया था कि एक ब्राइट ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में उनको नजर आया था रोटेट होता हुआ, और फिर एक फ्लैश जो है उसमें से स्टेडी जो है लूनर लैंडर के पास, और ये अपोलो 17 जो कि 1972 का क्रू मिशन था मून के लिए, तब का ये जो है ये इंसिडेंट है उन्होंने किया था कि एक ब्राइट ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में उनको नजर आया था रोटेट होता हुआ, और फिर एक फ्लैश जो है उसमें से स्टेडी जो है रिदम जो है वो निकली थी, और ये

ये तो ऐसा लग रहा है कोई मिल गया वाली सिचुएशन हो रही है, मतलब कोई मिल गया, मैं जब जादू यहाँ पर आया था तब भी ऐसा ही हुआ था. नो नो नो जी आई नो आई नो. सो या मतलब ऑफ कोर्स हमेशा से जो है वो जो राइटर्स थे और जो हमारे डायरेक्टर्स थे, जो हमारे फिल्म मेकर्स थे, फिर चाहे वो हॉलीवुड के हों या बॉलीवुड के हों, उन सबको पहले से ही पता था कि जब भी एलियंस आते हैं वो अपने साथ म्यूजिक लेकर आते हैं और साथ में बहुत सारी रोशनी लेकर आती है. मतलब ऐसे ही यूएफओ जो है वो लैंड नहीं करते हैं, म्यूजिक भी बजता है, रोशनी भी आती है, मतलब इट्स अ फुल ऑन स्टेज एंट्री. सो वैसा ही कुछ जो है यहाँ पे अपोलो मिशन के द्वारा भी बताया गया. अब आप लोग बोलोगे कि हमें तो लगता है अपोलो मिशन ही रियल नहीं है, तो क्या ये यूएफओ फाइल्स भी रियल हैं? वेल वेल वेल, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस मामले में बिलीव करती हूँ, लेकिन एलियंस हैं ये तो मुझे कहीं ना कहीं पूरी तरह लगता है. मिशन अपोलो मिशन और वो लैंडिंग रियल थी या नहीं, उसके बारे में डिबेट की जा सकती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशन वाली स्टोरी सुनाने वाली हूँ। सो ऑफ कोर्स आपको उसके लिए रेडी रहना है। बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, बट कहानी है एक व्यक्ति की जो कि डॉक्टर बनने का सपना देखता रहा अपनी पूरी जिंदगी, और अब 70 साल की उम्र में फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस सपने को चेज करूंगा, मैं इस गोल को चेज करूंगा, मैं इस ड्रीम को चेज करूंगा और पूरी तरह से करूंगा। उनकी वाइफ, उनकी फैमिली ने उनका साथ दिया और अब वो 70 साल की उम्र में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में नजर आए। जी हाँ, आप लोग बोल रहे होंगे कि ये कहानी तो सुनी सुनी लग रही है। वेल, अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने एक मैक्सिकन व्यक्ति की स्टोरी सुनाई थी जो कि अमेरिका में इमिग्रेंट बनकर आया था, पूरी जिंदगी जो है वो जद्दोजहद में निकाल दी, लेकिन जो पढ़ाई पूरी करने का सपना था वो आज भी जिंदा है। ही वॉज इन हिज 80s एंड ही स्टिल गेव द एग्जाम। सो यहां पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और मुझे इतना पता चल गया है कि अगर हमें कुछ करना है ना, अगर हमें सच में कुछ करना है, तो कोई उम्र जो है वो बड़ी या छोटी नहीं होती। कुछ भी और कभी भी टाइम जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता, टाइम जो है वो कभी भी नहीं जाता। सो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि टाइम जाता नहीं है, क्योंकि टाइम सच में जो है वो बीतता जाता है, लेकिन दैट डजंट मीन यू कांट डू समथिंग दैट यू रियली रियली लव एंड यू वॉन्ट टू डू। एंड इफ इट्स अबाउट स्टडीज, इफ इट्स अबाउट डिग्रीज, इफ इट्स अबाउट योर गोल, कोई सपना जो कि आप देखा है आपने, तो आपको डेफिनेटली वो कर लेना चाहिए। आई मीन 90s में लोग अपने बकेट लिस्ट को पूरा कर रहे हैं, तो क्या आप ये नहीं करोगे? ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। सो ये कहानी है कि है एक व्यक्ति की जो कि जिनका नाम है अशोक बहार, और वो पूरी जिंदगी जो है उन्होंने बहुत सारा मेडिकल नॉलेज लिया, लेकिन उनके पास कोई पर्टिकुलर और ऑफिशियल डिग्री नहीं थी। उनकी माँ का सपना था कि वो उन्हें देखना चाहती हैं डॉक्टर के रूप में, लेकिन माँ का सपना वो पूरा नहीं कर पाए। 70 साल की उम्र में उन्हें लगा कि नहीं यार, मतलब जिंदगी में इतने सारे काम कर लिए, जद्दोजहद कर ली, सब कुछ तो कर लिया, अब वो वक्त है जब मैं सच में कुछ कर सकता हूँ अपने लिए, तो क्यों ना वो कर ही लूं। जी हाँ, उनकी वाइफ जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है या द रियल डॉक्टर है, वहां पर उन्होंने भी उनका साथ दिया और उन्होंने फाइनली नीट का एग्जाम, जो कि इंडिया में, भारत में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है, वो एग्जाम देने के लिए वो पहुंचे लखनऊ में एंट्रेंस एग्जाम सेंटर में, और वहां पे उन्होंने सब लोगों को चौंका दिया। जो स्टूडेंट्स थे जो कि अगेन सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का, उनको लगता है कि उम्र जो है वो बीत गई, तो उससे पहले जो है वो करना पड़ेगा, मतलब टाइम निकलने से पहले आपको सब कुछ करना पड़ेगा। हम लोग यही सोचते रहे और हम लोग यही सोचते रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने प्रूव कर दिया कि कुछ नहीं है, कोई देर नहीं है आपको अपना सपना पूरा करने के लिए, कभी भी देर नहीं होती। एंड आई एम लाइक लिटरली मोटिवेटेड राइट नाउ। अगर आप लोग भी कोई सपना देखा है आप लोगों ने और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत देर हो गई है, तो यू नो व्हाट, मैं इतना कहूंगी कि इस दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, अगर अभी अपने सपनों को पूरा नहीं किया तो कब किया, राइट? सो जरूर अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाइए। यू नो, एज डजंट मैटर, टाइम डजंट मैटर, बस अपने सपनों का ख्याल कीजिए। कुछ ऐसा है जो आपने ड्रीम देखा है, कोई सपना देखा है आपने जो कि आप पूरा करना चाहते हो, जरूर कीजिए। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब आपको बताते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, क्योंकि अगर आप डेजर्ट लवर्स हैं और अगर आप तिरामिसू, खासकर तिरामिसू द फेमस इटालियन डेजर्ट तिरामिसू के फैन हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। आप लोग बोलोगे निव्या शर्मा What are you talking about? हाँ, जल्दी बताओ, मतलब नेकी और पूछ जल्दी बताओ, इसको बताने में तो बिल्कुल भी देरी मत करो। सो हुआ कुछ ऐसे ही, जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके लिए इटली में आ रहा है एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, निविया कहने का मतलब क्या है वो बताओ। वेल आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ जज तिरामिसू कंपटीशन में। आप लोग बोलोगे कि हैं, निव्या शर्मा सच बोल रही हो क्या? आपको तो बताइए कि तिरामिसू जो है वो इटालियन डेजर्ट है, इट्स अ लेजेंडरी डेजर्ट और बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट लाइक इट दैट मच, बट या देर आर मेनी पीपल, आई नो मेनी पीपल जिनको ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। सो तिरामिसू का वर्ल्ड कप होता है हर साल अक्टूबर में इटली में। जी हाँ, इटली में, उसी जगह पर जहां से शुरू हुआ था ये डेजर्ट, जो इस डेजर्ट का असली घर है। जी हाँ, और उस जगह का नाम है ट्रेविसो। जी हाँ, सो ट्रेविसो में ये वर्ल्ड कप होता है एवरी ईयर इन अक्टूबर। वहां पे 100 टेस्टर्स को बुलाया जाता है और ये पब्लिक से चूज किया जाता है। ऑफकोर्स इसको चूज करने का भी एक क्राइटेरिया है। जी हाँ, फिर वो जजेस जो है, वो टेस्ट टेस्टर्स जो है, वो आते हैं ट्रेविसो में और वहां पर बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड, जो कि तिरामिसू बैटल ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है, उसमें तब्दील हो जाती है वो पूरी की पूरी जगह। बहुत सारे शेफ्स जो हैं, बहुत सारे शेफ्स यानी कि 240 कॉम्पिटिटर्स जो हैं, 240 तिरामिसू शेफ्स जो हैं, बेकर्स जो हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस वर्ल्ड कप में। और फिर उसके बाद जो है डिसाइड होता है कि हु इज द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ तिरामिसू, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा अच्छी खुशबू वाला तेरा मिसू कौन बनाता है? जी हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि ट्रेविसो में ये होता है, ये बर्थ प्लेस माना जाता है तेरा मिसू का, और ये डेजर्ट बैटल ग्राउंड में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, और जैसे मैंने कहा कि 100 टेस्ट टेस्टर्स को, वॉलंटियर्स को टेस्ट जो है वो किया जाता है, चूज किया जाता है, उनकी जो है उन्हें प्रोफेशनल जजेस के रूप में जो है वो बुलाया जाता है, और वो इसे टेस्ट करते हैं, वो इसे टेस्ट करते हैं, फिर जज करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो वर्ल्ड चैंपियन जो है वो घोषित किया जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा बाकी सब ठीक है, पर तुम हमें ये बताओ कि ये बनना कैसे है, मतलब ये टेस्ट टेस्टर हम बन कैसे सकते हैं? सो एप्लीकेंट्स मस्ट पास 15 क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट ऑन तिरामिसू रूल्स हिस्ट्री एंड जजिंग क्राइटेरिया विद स्पॉट्स ओपन गोन विद आर्स एज स्पीड मैटर्स एज मच एज नॉलेज। जी हाँ, सो ऑफकोर्स इस चीज में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, मतलब लोगों को इटली जाने में तो इंटरेस्ट ही है, लेकिन इटली जाने के साथ साथ उन्हें ऐसी किसी जगह पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, दैट टू एज अ जज, मतलब आपके सामने तिरामिसू का तिरामिसू, इतना सारा तिरामिसू पड़ा हुआ है और आपको क्या करना है, आपको मजे से उसे बैठकर खाना है और आपको डिसाइड करना है कि ओके यू नो व्हाट, तुमने ज्यादा स्वाद बनाया है, ना ना ना ना, इससे भी ज्यादा स्वाद इसने बनाया है, अरे यार इन सबसे ज्यादा स्वाद तो इसने बनाया है, ही शुड बी द वर्ल्ड चैंपियन। आई मीन यू गेट टू डिसाइड कि कौन सबसे अच्छा तिरामिसू बनाता है, और आपको टेस्ट करने को मिलता है वो वर्ल्ड फेमस शेफ्स जो आते हैं तिरामिसू बनाने के लिए। सो ऑफ कोर्स यहां पर आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा ओके ठीक है, तिरामिसू टेस्ट करने को मिलता है, लेकिन क्या इसमें कुछ पे भी किया जाता है? वेल, वही मैं आपको बताने वाली थी कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से तिरामिसू का फैन होना पड़ेगा, आपको इटली का फैन होना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं, आपको कोई भी पे करेगा इसके लिए, और इनफैक्ट आपको कोई फ्लाइट टिकट्स भी नहीं देगा, आपको सब कुछ खुद ही स्पॉन्सर करना पड़ेगा। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा वर्ल्ड चैंपियन, आपको मिलेगा वो एंडलेस तिरामिसू टेस्ट करने के लिए, या दैट्स ऑल यू आर गोना गेट। बट स्टिल, इफ यू आर अ फैन ऑफ तिरामिसू एंड इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एज अ जज इन दिस कॉम्पिटिशन, इन दिस यू नो वर्ल्ड कप ऑफ तिरामिसू, देन यू कैन गो फॉर इट। आई मीन मैं जानती हूं बहुत सारे लोगों को, और मुझे पता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डेजर्ट फैन है, और खासकर तिरामिसू के बहुत बड़े फैन है, वो इसमें बहुत ही खुशी खुशी जो है वो पार्टिसिपेट करने जाएंगे, नॉट एज अ कंटेस्टेंट बट एज अ जज, क्योंकि किसी को भी टेस्टी तिरामिसू खाना क्यों बुरा लगेगा, राइट? बट अगेन, आप इटली का अपना वेकेशन भी कर सकते हो प्लान, और उसके साथ आप तिरामिसू के जज भी बन सकते हो। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, राइट? जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: out of 10?
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन। भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारी गपशपें करने के लिए, लेकिन अगेन खबरों के बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं जा रही होती हैं, खासकर आजकल, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट पे वॉर वाली सिचुएशन है और जो नेशंस वॉर में नहीं है उनके भी होने के चांसेस हैं। सो ऐसे में पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है इस फ्रंट पर, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से, क्योंकि भारत में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब हुआ है, यानी कि इंडिया में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब हुआ है। और वहां पर पीएम मोदी हैदराबाद में एक स्पीच दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि फॉरेन ट्रिप्स लेना बंद कर दीजिए, फ्यूल बचाइए, जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम जो है उसका कल्चर का फॉलो कीजिए, और सोना चांदी एक साल तक बिल्कुल मत खरीदिए। जी हाँ, उन्होंने बोला ये, और उसके बाद धड़ाम से हो गया काम उन कंपनीज का जो सोना बनाती है, यानी कि जो ज्वेलरी कंपनीज हैं। जी हाँ, तो क्या हुआ है उनके साथ, आइए जरा बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा शेयर मार्केट से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सोना ना खरीदने की अपील की है। इसके बाद सोमवार को ज्वेलरी कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख ज्वेलरी कंपनियों में शेयरों में 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। स्काई गोल्ड के शेयर में सबसे ज्यादा 12% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 175 रुपए पर ये आ गए 475 रुपए पर आ गए। सैनको के शेयर करीब 11% टूटकर 325.5 रुपए पर पहुंच गए, जो पिछले भाव 365.40 रुपए से कम है। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पिछले भाव 424.55 रुपए के से करीब 10% गिरकर 382.10 रुपए पर आ गए। वहीं यही हाल हुआ है और भी बहुत सारी कंपनीज का। सो स्केट्रोल इंडेक्स लाल निशान में थे, इसमें भी खासकर निफ्टी कंज्यूमर डब्ल्यू बिल्स सबसे ज्यादा गिरा। ये स्केट्रोल इंडेक्स 3% से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहा था, और ये सब कुछ हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारतीयों को सोना चांदी एक साल तक बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और यहाँ पर बात करते हैं अब एक और इम्पोर्टेंट चीज की, और वो है ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में। ईरान के जंग खत्म करने वाले प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है जो युद्ध खत्म करने के मकसद से भेजा गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैंने अभी ईरान के तथाकथित नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे यह पसंद नहीं आया है, यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए एक प्रस्ताव भेजा था। पाकिस्तान इस मामले में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। प्रस्ताव में सभी मोर्चों पर तुरंत जंग रोकने, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करने और ईरान पर आगे कोई हमला ना करने की गारंटी शामिल थी। इससे पहले टेलीविजन नेटवर्क अल जजीरा को ईरान के एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि ईरान की ओर से भेजा गया प्रस्ताव वास्तविक और सकारात्मक है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल सीज फायर है, लेकिन युद्ध खत्म करने पर दोनों के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन ये सीज फायर थोड़ा नाम का सीज फायर है, क्योंकि एक दूसरे पर हमले ये अभी भी कर रहे हैं बीच बीच में। सो सीज फायर है, बट कैसा है ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ ट्रंप ने बता दिया है कि वो कब जा रहे हैं चीन। लेकिन इससे बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं, क्योंकि इस मीटिंग के होने का जो अंदेशा है वही काफी है बहुत सारे लोगों को विचलित करने का। सबसे पहले तो चीन की यात्रा पर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, और विदेश मंत्रालय ने बता दी है तारीखें। ईरान से कई मुद्दों के बीच चल रही तनातनी के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा करेंगे। ये लगभग 9 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा होगी। ट्रंप की ये यात्रा मार्च में होनी थी, लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे तनाव की वजह से टाल दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप इस यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मध्य पूर्व में चल रही तनातनी और हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची भी चीन के दौरे पर गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले चीन ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बेहद अहम व्यापारिक मार्ग है और उसकी नाकाबंदी करना सही फैसला नहीं है। और क्योंकि शी जिनपिंग और ट्रंप करने वाले हैं मीटिंग, तो ताइवान के नॉर्मल सिटीजन्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे, अगर कुछ भी हालात गड़बड़ होते हैं, अगर चीन हमला करता है, तो वो कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी कंट्री को बचा सकते हैं। जी हाँ, पावर स्ट्रगल जो है वो रियल है, क्योंकि हर कंट्री में कोई ना कोई घर का भेदी लंका ढाए वाली सिचुएशन तो है। कुछ दिन पहले ताइवान की ऑपोजिशन लीडर शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग पहुंची थी। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब ताइवान जो कि अपनी सोवरेनिटी की बात कहता है, वो कहता है कि हम एक फ्री नेशन है और हम किसी भी हालत में चीन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम पूरी तरह से अलग एक देश है। वहां की गवर्नमेंट ये बोलती है, वहां के लोग ये बोलते हैं, लेकिन वहीं की ऑपोजिशन लीडर पहुंची है और पहुंची थी कुछ वक्त पहले बीजिंग। क्या इशारा करता है ये? यही इशारा करता है कि ऐसे ही ताइवान को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो खत्म नहीं, बल्कि उनको चीन में मिलाने की पूरी साजिश की जा रही है। अगर अभी वाली गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो दूसरी गवर्नमेंट जो कि ऑपोजिशन में है, उनके थ्रू ये किया जा सकता है, और चाइना इसे मेक श्योर करने की पूरी तैयारी कर रहा है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, इस दुनिया में कुछ और बहुत गड़बड़ हो सकता था और कितना ही गड़बड़ हो सकता था कि नॉर्थ कोरिया से एक नई खबर आई है। सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया से पहले भी एक नई खबर आई थी, एक ऐसी खबर जहां पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो साउथ कोरिया के साथ कभी भी रीयूनाइट नहीं होंगे। जी हाँ, आज दिन तक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात सामने थी और एक बात हमेशा से थी कि देयर वर चांसेस कि वो दोनों कंट्रीज एक साथ आती, वो रीयूनाइट हो जाती, मतलब देयर वर चांसेस, पर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया कुछ दिन पहले। जी हाँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ कोरिया, नॉट साउथ कोरिया। किंग किम योंग जोंग की मैं यहां पर बात कर रही हूं, किम जोंग योंग। और यहां पर ये व्यक्ति ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे तो चेंज किया ही है, अब उसने एक और नया कारनामा कर दिया। उसने रशिया से सीख लेते हुए एक बहुत ही खतरनाक काम किया। उसने कह दिया है कि अगर कभी भी गलती से भी उस पर अटैक होता है या नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की जाती है तो वहां से न्यूक्लियर मिसाइल्स खुद ब खुद लॉन्च हो जाएंगी। मतलब कि एज सून एज समवन अटैक्स ऑन किम योंग जोंग, जी हाँ, तो जब किम योंग जोंग जो है उस पर अटैक होगा उसी वक्त, मतलब अपने आप बाय डिफॉल्ट न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च हो जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि किस तरफ, बिकॉज सब यही पूछ रहे हैं किस तरफ लॉन्च हो जाएंगी, कहां को लॉन्च हो जाएंगी। बट यहां पर किम योंग जोंग, जो कि अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज्यादा पैनिक में रहता है इंसान हमेशा, मतलब वो व्यक्ति कभी भी एयर ट्रैवल भी नहीं करता, बाय प्लेन ट्रैवल भी नहीं करता, वो एक आर्म्ड ट्रेन से ट्रैवल करता है, कभी भी वो व्यक्ति प्लेन से ट्रैवल नहीं करता, वो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ चलता है, वो हमेशा डरा रहता है कि कोई उसकी जान लेने की कोशिश ना कर ले। उसने ये कारनामा कर दिखाया, मतलब अगर कभी कोई नेशन अमेरिका या कोई और कंट्री उस पर अटैक भी करती है गलती से भी, तो अगर उसकी जान को कुछ भी होता है, लीडरशिप को कोई भी खतरा होता है, तो न्यूक्लियर मिसाइल्स खुद ही लॉन्च हो जाएंगी। और उन्होंने ये सिस्टम तैयार कर दिया है। अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, ये सुना सुना क्यों लग रहा है? वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि इसे डेड हैंड भी कहा जाता है और ये रशिया की एक बहुत ही बड़ी टेक्निक थी। जब यहां पर सोवियत यूनियन को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, रशिया और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इनके पीछे पड़ी हुई थी, उस वक्त रशिया ने डेड हैंड बनाया था। एक ऐसा सिस्टम जहां पर अगर गवर्नमेंट को, लीडरशिप को कोई भी नुकसान होता है तो खुद ही बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स, एटॉमिक मिसाइल्स जो है वो लॉन्च हो जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। और मतलब कि अगर कोई चाहकर भी रशिया को खत्म करना चाहता है तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, रशिया ने ये मेक श्योर किया था और ये उनका बहुत पुराना जो है वो हथियार है और इसको इनका ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। वैसा ही अब किम योंग जोंग ने भी कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स किम योंग जोंग के पास उतनी मिसाइल्स नहीं है, उतनी लंबी रेंज की मिसाइल्स नहीं है, न्यूक्लियर मिसाइल्स डेफिनेटली है। लेकिन यहां पर उसने मेक श्योर किया है कि जो ईरान के साथ हुआ वो कोई उसके साथ करने की कोशिश भी ना करे। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इतनी बात तो मुझे समझ आ गई है कि इस दुनिया में इंसान अपने आप को कितना भी सुपीरियर समझ ले, बिल्लियां उनको सुपीरियर नहीं समझती, बिल्लियां उनको सेवक ही समझती है। आप लोग बोलोगे कि बिल्लियां कहां से आ गई, क्या बताने वाली हूँ आरजे निविया। वेल, आपने बहुत सारी वीडियोज में देखा होगा, और अगर आप कैट पेरेंट हैं तो आपको पता होगा कि कैट्स आर नॉट लाइक डॉग्स। डॉग्स जो है वो आपको सेल्फलेसली प्यार करते हैं, डॉग्स जो है वो आपको हमेशा फॉलो करते हैं, डॉग्स आपका स्वागत करते हैं, फिर चाहे आप मार्केट गए हो, फिर चाहे ट्रिप पे गए हो, आप 2 घंटे के लिए गए हो, आप 2 मिनट के लिए गए हो, या आप 2 महीने के लिए गए हो, डॉग्स आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन कैट्स आर सो डिफरेंट। कैट्स जो है वो लिटरली इंसानों को अपना सेवक मानती हैं, और ये कैट पेरेंट्स यानी कि कैट ओनर्स जो है वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। अब क्योंकि मैं आपको एक बिल्ली की स्टोरी बताने वाली हूँ, किस्सा बताने वाली हूँ, सो ऑफ कोर्स उसके लिए ही मैं आपको ये सब बता रही थी। सो एक बिल्ली की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि एक स्टोर में जाती है, ग्रोसरी स्टोर में जाती है, और जब उसको उसकी चीजें नहीं लेने दी जाती, मतलब ऑफ कोर्स वो स्टोर में जाती है अपने खाने की चीजें लेने के लिए और चुराने के लिए बेसिकली, और चुराती भी नहीं है, मतलब वो भागती नहीं है। वो जो करती है वो बहुत ही ज्यादा फनी चीज करती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और यूनिक चीज करती है। वो अपने खाने की चीज उठाने की कोशिश करती है और वो रोज जाती है वहां पर, वो अपनी चीजें उठाने की कोशिश करती है और जब ग्रोसरी स्टोर का जो पर्सन है इंचार्ज वो आता है, उसे रोकता है, उसे भगाने की कोशिश करता है, तो वो सामने से अपने हाथ से लड़ाई करने की कोशिश करती है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग। जैसे हम अपने हाथों से लड़ते हैं, वो बिल्ली भी अपने हाथों से लड़ने की कोशिश करती है। एंड गेस व्हाट, वो रोज आती है, रोज चीजें वहां से उठाने की कोशिश करती है और जब उसे उठाने नहीं दी जाती तो वो सामने से फाइट करती है, लिटरली फाइट करती है। एंड देन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, ओनली अ कैट कैन डू इट, बिकॉज ऐसा कहा जाता है और इजिप्शियन हिस्ट्री, और इनफैक्ट हिस्ट्री नहीं कहेंगे, माइथोलॉजी कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, कि कैट्स जो हैं वो बहुत समय पहले इंसानों को रूल किया करती थी। आप मुझे बताइए, क्या आपने भी इस थियोरी के बारे में कुछ सुना है, इस कहानी के बारे में सुना है, तो जरूर बताइएगा हमें। और क्या लगता है आपको कि कैट सच में ऐसा कर सकती है? वेल, जब मैं इस वीडियो को देख रही थी तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था, यू नो व्हाट, अगर कोई भी और जानवर होता ना तो मैं मान लेती कि वो ये नहीं करता, लेकिन कैट कैन लिटरली डू इट। आप मुझे बताइएगा कि आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है बिल्लियों को लेकर जो बहुत ही ज्यादा यादगार है, तो जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: एक हो गए हम और तुम।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब बिल्कुल देर किए बिना यहाँ पर एक फरमाइशी गीत हम करने वाले हैं प्ले। ऑफ कोर्स ये गाना जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस गाने का नाम है खूबसूरत गाना आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा। जी हाँ, ये खूबसूरत सा गाना ऑफ कोर्स रफी साहब ने गाया है और ये लव इन टोक्यो मूवी का गाना है। और ये गाना इसलिए भी खास है क्योंकि ये मेरी वन ऑफ मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस ऑफ दैट एरा का गाना है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आशा पारिक जी। सो आशा पारिक जी, उनकी आंखें, क्या फैन है हम उनके, राइट? सो अगेन, ये उन्हीं की मूवी का गाना है। लव इन टोक्यो इज अ वेरी वेरी फेमस मूवी एंड उस ही की बात हो रही है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये फरमाइश आई है हमारे बहुत ही खास लिसनर जो कि पहली बार बेसिकली फरमाइश कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर। और थैंक यू सो मच विमल जी अगेन फरमाइश के लिए और हिस्सा बनने के लिए हमारे इस प्रोग्राम का। एंड बिल्कुल देर ना किए हुए हम ये गाना आपके लिए प्ले करेंगे और रफी साहब को अगेन याद करेंगे, क्योंकि रफी साहब के गाने सुनना अपने आप में सबसे ज्यादा खूबसूरत जो आपका जो हो सकता है ना फीलिंग वो होती है। एंड इनफैक्ट विमल जी ने हमें ये भी बताया कि कैसे वो रफी साहब के बहुत बड़े फैन हैं। तो मैं उनसे यही बात कर रही थी कि विमल जी, बात तो आपने सही कर दी, क्योंकि रफी साहब के फैंस जो है ना वो डिफरेंट ब्रीड है। रफी साहब के फैंस अगर आप हो और आप सच में रफी साहब के गानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, या हम में से कोई भी रफी साहब के गानों को पसंद करता है, तो मतलब हमें गाने की समझ है, म्यूजिक की समझ है। देर इज नो वे हमें म्यूजिक की समझ नहीं है और हम रफी साहब के गानों को पसंद करें। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं रफी साहब की फैन हूँ। पहला गाना सुना, पहले गाने से ही मुझे मोहब्बत हो गई उनकी आवाज से। सो या थैंक यू सो मच विमल जी, रफी साहब का गाना फरमाइश करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि कैसे आप उनके फैन हो। यहाँ पर ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

कैसे बताऊं आचा रे आज जरा आ लहरा के आज जरा आंखों से दिल में।

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ।
1: क्या कहूँ मैं इस गाने के बारे में, क्या कहूँ, मतलब मैं आई थिंक इस गाने को पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आया कि क्यों इस गाने के बारे में इतना ज्यादा कहा गया हमारे लिसनर के बारे में और जिन्होंने फरमाइश की है। मतलब क्या खूबसूरत गाना है और कितना रोमांटिक सॉन्ग है ये, और कितनी खूबसूरती से रफी साहब ने इसे, यू नो द फ्लेक्सिबिलिटी, द वर्सिटैलिटी, यू नो द वॉइस मॉडिफिकेशन, मॉड्यूलेशन, लाइक व्हाट कैन आई से रफी साहब, मतलब क्या कहा जाए आपके बारे में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद आया ये गाना, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। एंड डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत फरमाइश, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिसनर्स अपनी फरमाइशों के थ्रू जिन गानों को हमें सुनाते हैं वो तो हमने भी नहीं सुने होते कभी कभार, और वो इतने खूबसूरत होते हैं कि उसके बाद वो हमेशा के लिए हिस्सा बन जाते हैं हमारे शो का। थैंक यू सो मच, ऐसे ही इन खूबसूरत फरमाइशों को जारी रखिए। इसी के साथ अब वक्त आ गया है पूरी तरह से इन पुराने गानों की आगोश में खोने का, और आप लोग बोलोगे समझ आ गया निविया शर्मा, बात हो रही है ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की। जी हाँ, आपने सही सोचा और सही सुना, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड जो है वो शुरू हो रहा है, मतलब पूरी तरह से पुराने गाने ही हम प्ले करेंगे और पूरी तरह से हम आपको उस एरा में ले जाने के लिए तैयार हैं। तो सफर शुरू हो गया है, सवार हो जाइए, क्योंकि किस्से भी होंगे पुराने और गाने तो होंगे सुहाने। जी हाँ, मौसम भी खूबसूरत है, एक बहुत ही प्यारा गाना जो कि मुझे काफी पसंद है और मेरे लिसनर्स को भी काफी पसंद है, और ये गाना कॉन्फिडेंस से गाया गया, मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना इस गाने को गाने के दौरान आप फील करोगे, मतलब आप सुनोगे तो आपको फील होगा कि कितने कॉन्फिडेंस से इस गाने को लिखा गया है, सोचा गया है, इसकी धुन बनाई गई है और उसके बाद इसे गाया गया है। ये गाना है आशा जी का जाइए आप कहां जाएंगे, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बहुत सारी बातें है।

साथ रफी साहब की बात से ही शुरुआत हुई है आज की, आज के इस सेगमेंट की, ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की। तो यहाँ पर एक चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, और ये चीज के बारे में बहुत सारे सिंगर्स ने बात की है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि रफी साहब अपने जो सिंगर्स होते थे, अपने कंटेम्प्रेरीज होते थे, उनसे बहुत ही अच्छे से वो बात किया करते थे। इतने अच्छे से बात किया करते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, अब इसके बारे में उषा मंगेशकर जी ने कुछ कहा है। जी हाँ, उषा मंगेशकर जी एक इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि रफी साहब के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। अब रफी साहब जो है वो इतना बड़े नाम हुए हैं, जी हाँ, इतना अच्छा वो गाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि जो उनके साथ कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उनसे ज्यादा फेमस नहीं है, उनके जितने फेमस नहीं है, और जो अभी न्यू कमर्स हैं उनके साथ वो बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। जी हाँ, और इनफैक्ट वो पूछा करते थे उनसे कि मैंने कैसे गाया। उषा मंगेशकर जी ने यही किस्सा यहाँ पर शेयर किया कि कैसे रफी साहब के साथ गाना जो है वो लिटरली एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वो अपना गाना गाया करते थे, वो अपने गाने को कम्प्लीटली गाया करते थे, और फिर उसके बाद वो आते थे, और फिर उसके बाद वो उषा जी से पूछा करते थे। जब जब भी उन्होंने उषा मंगेशकर जी के साथ रिकॉर्डिंग की है, वो उषा जी से पूछते थे कि उषा जी तो फिर मैंने कैसा गाया। उषा जी कहती हैं कि रफी साहब अगर ये पूछेंगे वो कैसा गाया, वो ये भी सोचा करते थे कि क्योंकि हमारा पूरा घराना जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री में था और हम गाना गाया करते थे, मैं उतनी ज्यादा फेमस नहीं थी लेकिन हमारे घर में बहुत सारे लोग काफी फेमस थे, तो वो मुझसे भी उतने ही अदब से आकर बात किया करते थे। वो मुझसे भी पूछते थे, उषा जी मैंने कैसा गाया, और जब सामने से वो पूछते थे तो मैं भी कहती थी कि हाँ आपने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया रफी साहब। जी हाँ, मतलब रफी साहब जैसे बड़े कैलिबर का आर्टिस्ट पूछ रहा है सामने से कि मैंने कैसा गाया, लेकिन क्या ये सब प्रैक्टिस कर पाए वर्षों? नहीं, रफी साहब की शख्सियत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब उनकी गायकी, उनकी आर्टिस्ट्री, वो सब एक तरफ है, लेकिन उनकी शख्सियत, उनकी इंसानियत, उनका बात करने का तरीका, वो अलग लेवल पे था। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपको एक और बहुत ही फनी बट बहुत ही दिलचस्प किस्सा मैं सुनाने वाली हूँ। और इस किस्से के बारे में एक्चुअली खुद ही प्राण साहब ने बताया, और ये किस्सा नहीं है, ये एक फैक्ट है जो उनके बारे में है। जी हाँ, सो बेसिकली प्राण साहब को कौन नहीं जानता, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, मुझे लगता है हर एक बच्चा बच्चा भी जानता होगा। मतलब अब वाले बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन वो 90s वाले बच्चे, वो 80s वाले बच्चे या अर्ली 2000s वाले बच्चे भी प्राण साहब को जानते होंगे। अब प्राण साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में ये कहना कि उनकी शख्सियत इतनी खतरनाक थी कि बड़े बड़े हीरो भी फीके पड़ जाते थे, ये तो हम कह चुके हैं। जी हाँ, उनका स्वैग इतना खतरनाक था कि वो अगर सीन में आ जाते थे तो थिएटर्स में वाह वाह वाह वाह हो जाती थी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्राण साहब इतने खतरनाक एक्टर थे तो वो विलन के कैरेक्टर्स क्यों करते थे, हीरो के कैरेक्टर्स क्यों नहीं करते थे? स्टार्टिंग में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन प्राण साहब ने खुद ही इस चीज का खुलासा कर दिया कि क्यों वो हीरो के कैरेक्टर्स को प्ले नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने विलन होना चूज किया। उन्होंने कहा, मुझे गाने नहीं गाए जाते थे मुझसे। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि ये तो बहुत ही फनी है, ये तो वो वाली सिचुएशन हो गई जैसे कुछ एक्टर्स डांस नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने एक्टर बनना नहीं छोड़ा, उन्होंने हीरो बनना नहीं छोड़ा। लेकिन प्राण साहब को लिप सिंकिंग करना बहुत बुरा लगता था। जी हाँ, वो कहते मुझसे गाने नहीं गाए जाते थे, इसलिए मैंने हीरो बनने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन प्राण साहब ने आगे और भी कहा, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पूरे पिक्चर्स में, पूरे फिल्मी करियर में गाने नहीं गाए, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स में गाने गाए हैं, लेकिन मैंने गाने वही गाए हैं जो कि कवाली हो गई, जो कि सिचुएशनल सॉन्ग हो गया, जहां पर स्टोरी पिक्चर की चल रही है। मतलब मैं वैसा हीरो नहीं बन सकता था, वैसा एक्टर नहीं बन सकता था कि ओके ठीक है, पहाड़ों पर चढ़कर मैं मटक रहा हूं, मैं गा रहा हूं, ऐसा हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, मैं ऐसा गाना नहीं गा सकता था। उसके बाद भी मैंने गाने गाए जब मैं विलन बन गया, जब मैंने दूसरे कैरेक्टर्स प्ले करने शुरू कर दिए, दूसरे रोल्स प्ले करने शुरू कर दिए, लेकिन वो स्टोरी का पार्ट रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि वाह भाई वाह, हमने कभी सोचा नहीं था कि प्राण साहब ने हीरो बनने के पीछे, ना हीरो बनने के पीछे ये रास्ता, मतलब उन्होंने विलन बनना चूज किया, हीरो बनना नहीं, क्योंकि उन्हें गाना गाना बहुत मुश्किल लगता था। मतलब मैंने बहुत सारे रीजन सोचे होंगे, बट ये बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाजत ले रहे हैं क्योंकि जाना होगा, कल वापस आएंगे, फिर से आपको स्ट्रेस मुक्त बनाएंगे, आपको एंटरटेन करेंगे और बहुत सारे गाने भी सुनाएंगे। लेकिन आज आपको मजे करने हैं, खाना खाना है, यमी सा टेस्टी था, और वो सारी चीजें करनी है जो आपको अच्छा फील करवाती हैं, रिलैक्स फील करवाती है, क्योंकि पूरे दिन मेहनत करने के बाद रिलैक्समेंट जरूरी है। अच्छा सा म्यूजिक सुनिए, अच्छा सा कुछ पढ़िए, या फिर इस खूबसूरत मौसम का आनंद लीजिए बाहर बैठिए, क्योंकि उसके बाद जो है अभी बारिश जो है वो बूंदाबांदी शुरू होने के पूरे पूरे आसार हो गए हैं, कुछ जगहों पर शुरू भी हो गई है। सो या इस चीज का ध्यान रखिए। दैट्स अबाउट इट, एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में आज एक नई AI सर्च कंसल्टेंसी लॉन्च हुई है, जो यहां के छोटे और मध्यम स्तर के बिजनेसेस को गूगल और चैट GPT जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगी। वहीं ब्रिस्बेन स्थित एलेवरा लिथियम ने घाना के अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए एक चीनी कंपनी के साथ करोड़ों डॉलर का समझौता किया है, जिससे कंपनी अब अपने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के एसेट्स पर ध्यान दे सकेगी। इसी के साथ ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में आज मौसम सुहावना रहने वाला था, और जैसे कि पहले ही बता दिया गया था, लेकिन दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी की संभावना बताई गई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जाएगी। वहीं ब्रिस्बेन के मुख्य ब्रिज और हाईवे पर आज सुबह के वक्त मरम्मत कार्य के चलते ट्रैफिक थोड़ा धीमा है। ऑफिस जाने वाले लोग एक्स्ट्रा समय लेकर चले, ये पहले ही कहा गया था, और उसके बाद जो वापस जाने वाले हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। वहीं ब्रिस्बेन के टेक हब में आज कई नए स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्वींसलैंड के टॉप इन्वेस्टर्स शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ फोर्टिट्यूड वैली में आज शाम एक मल्टीकल्चरल फूड फेस्ट आयोजित हो रहा है, जहां आप अलग अलग देशों के जायकों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर विशेष महापूजा कर रहे हैं। मंदिर के शिखर पर पहली बार 11 पवित्र तीर्थों के जल से जल अभिषेक किया गया। वहीं SBI की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत की इकोनॉमी 6.6% की दर से बढ़ने वाली है। यह खबर बाजार और आम आदमी दोनों के लिए एक बड़ी राहत है। वहीं भारत अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है, जिनमें कहा गया था कि भारत और UAE के बीच फुजेरा पोर्ट के जरिए भारतीयों को निकालने का कोई समझौता हुआ है। सरकार ने इसे फेक न्यूज करार दिया है। इसके साथ पीएम मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए अगले एक साल तक सोना कम खरीदने और ईंधन की बचत करने की खास अपील की है। वहीं बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी आज अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग करने जा रहे हैं। राज्य की नई प्रशासनिक दिशा को लेकर इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जी हां थाईलैंड के ताकतवर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री थाक्सिन शिनवात्रा को आज बैंकॉक की जेल से पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। उनके बाहर आने से थाईलैंड की राजनीति में फिर से हलचल मच सकती है। वहीं दक्षिण कोरिया ने अपने कार्गो जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस इस समुद्री रास्ते पर व्यापार सुरक्षित रखने के लिए कल रक्षा मंत्रियों की बड़ी मीटिंग करेंगे। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। इसी के साथ EU यानी कि यूरोपीय संघ आज वेस्ट बैंक में हिंसा फैलाने वाले इजरायली स्टेलर्स पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। हंगरी में सरकार बदलने के बाद यह फैसला संभव हो पाया है। इसी के साथ ईरान इजरायल युद्ध अपडेट में अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर ईरान अभी विचार कर रहा है, लेकिन जो प्रस्ताव ईरान ने अमेरिका को भेजा है उस पर ट्रंप ने अस्वीकार्य उसे बताया है, जिससे शांति की उम्मीदों पर फिलहाल संशय बना हुआ है। वहीं हंता वायरस की चपेट में आए एक इंटरनेशनल क्रूज शिप पर मौजूद दो भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास लगातार उनके संपर्क में है। इसके साथ ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे कई देशों में ईंधन की कमी हो रही है। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हराकर वनडे सीरीज 1-0 की बढ़त बना ली है। चार्ली डीन इस जीत की हीरो रही। वहीं आईपीएल 2026 का रोमांच कल रात रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से मात दी। फाफ डू प्लेसिस की टीम ने आखिर ओवर में मैच को अपने नाम किया। वहीं एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, भारत 44 साल बाद एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। आज से गुजरात के गांधीनगर में ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट शुरू हुआ है। वहीं ताशकंद में चल रही एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 9 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है, जिससे कई गोल्ड मेडल की उम्मीदें जग गई हैं। इसी के साथ तीरंदाजी में भी भारत का दबदबा बना हुआ है। शंघाई में चल रहे वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी और उनकी टीम ने चीन को रोमांचक शूट ऑफ में हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: है रेडियो 1701, जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।
5: This is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
0: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: आप लोग सुन रहे हैं गीत युग के प्यार भरे नगमे।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: जमी का चांद
1: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: लग रहा।
1: जी मैं संदेश अलोक शर्मा तुसे सुन रहे हो रेडियो ब्रिसोनी 101 ते जुड़ा हो चुके हैं। हुन तक दे हम खबरां दा तां फिर चलो करते हैं शुरुआत। अमरीका ते क्यूबा विचाले तनाव एक बार फिर शिखर ते पहुंच गया है। एक ताजा रिपोर्ट अनुसार पिछले कुछ महीनों विच क्यूबा दे तट नेड़े अमरीकी फौजी खुफिया उड़ाणा विच भारी वाधा दर्ज किया गया है, जो किसी वड्डे फौजी ऑपरेशन का संकेत हो सकता है। एविएशन डेटा दे विश्लेषण अनुसार 4 फरवरी तो हुण तक अमरीकी जल सेना ते हवाई सेना ने क्यूबा दे तट नेड़े घट्टो घट 25 उड़ाणा भरिया हन। यह जहाज हवाना ते सेंटियागो डी क्यूबा दे नेड़े पहुंच रहे हैं, जिन्हां विचों कुछ तट महज 40 मील की दूरी तक देखे गए हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट मुताबिक इन्हों मिशनों विच मुख तौर पर P-8A पोसीडन जासूसी जहाज, सिग्नल इंटेलीजेंस जहाज और उच्च तकनीकी ड्रोन शामिल हैं। उधर दूजे पास पंजाब विच खेतां नूं अग लगाउण दीआं घटनावां लगातार वधदीआं जा रहीआं ने। सूबे विच अजे मामलिआं दी गिणती 7000 तों पार हो चुकी है, जदकि पिछले 24 घंटिआं दौरान ही 932 नवे मामले सामने आए हन। हालांकि राष्ट्रीय आंकड़े मुताबिक पंजाब अजे भी मध्य प्रदेश तों पिछे है। पंजाब विच फिरोजपुर सब तों वध प्रभावित जिला बण के सामने आया है, जिथे 670 घटनावां दर्ज कीतीआं गईआं हन। इस तों बाद बठिंडा ते तरन तारण दा नंबर आउंदा। पराली साड़न दीआं वध रहीआं घटनावां नूं रोकण लई अधिकारीआं ने कार्रवाई तेज़ कर दी है। धारा 223 तहत 306 FIR दर्ज की गई हैं। सब तो वध कार्रवाई संगरूर विच 71, पटियाला विच 57 मामलों विच की गई है। इस तो इलावा 503 लाल एंट्रियां जमीनी रिकॉर्डों विच दर्ज की गई हैं। 875 मामलों विच कुल 42.80 लाख रूपये का वातावरण मुआवजा भी लगाया गया है। उधर दूजे पासे पंजाब दी सियासत तो वड्डी खबर सामने आई, जिसने सियासी गलियारियां विच हाहाकार मचा दित्ती है। खबरां मुताबिक संगरूर तो ज्ञान सिंह मान दे भाजपा विच शामिल होण दी चर्चा कारण सियासी माहौल पक्ता होया नजर आ रहा है। हैरानी दी गल है कि उन्हां दे नाल बरनाला तो NRI कारोबारी ते मशहूर ढाबा मालिक बलजिंदर सिंह भी भाजपा दा दमन फड़ सकदे हन। दस दईए कि उन्होंने पार्टी दा पल्ला फड़ लिया है। उन्हां दी तस्वीर भी सोशल मीडिया उपर वायरल हो रही है। जानकारी मुताबिक इस शमूलियत इक विशेष प्रोग्राम दौरान हुई सी, जिस विच हरियाणा दे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैणी ते पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ खुद मौजूद रहण के इस समागम नूं पंजाब भाजपा लई अहम सियासी कदम वजों देखिया जा रहा है। दस दईए कि ज्ञान सिंह मान पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे भरा हन। उन्हां दा नाम पहली बार सीधे तौर ते वड्डी सियासी चर्चा विच आया है। उन्हां दे भाजपा विच संभावित एंट्री ने सियासी हलकियां विच नवीं चर्चावां नूं जन्म दे दित्ता है। दूजे पासे बलजिंदर सिंह मालवा खेतर विच अपने कारोबार ते समाजिक सरगर्मियां करके जाने जांदे हन। विदेश नाल जुड़े होण दे बावजूद ओह पंजाब दी सियासत ते लोक भलाई दे मामलिआं विच दिलचस्पी रखदे हन।

0: हाँ जी, तक तो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो सस्पेंस थ्रिलर फिल्मा बहुत सारिया उन्होंने बारे मैं तुम दसिया भी है। 90s दोबारा चलते हैं, खैर टाइम वेस्ट किए बिना 90s दी यादा करिए ना। ताजिया तो बहुत सारिया फिल्मा सी। जॉनी लिवर की जो गल करिए तो जॉनी लिवर 90s के दहाके के बॉलीवुड फिल्मा विच कॉमेडी दे लई बेस्ट सीगे। एक्टर ना कुछ कलाकार शामिल से जिन्होंने घट स्क्रीन टाइम विच हुई दर्शकों के विचकार अपनी खास जगह बनाई सी। वह भावे कुछ देर लई स्क्रीन ते आउंदे सी पर समा वध दिंदे सी। तां मैं सोचा कि क्यों ना तुहानू उन्हां दी कुछ बेहतरीन फिल्मां बारे दसां। किन्हां दीआं? जॉनी लिवर दीआं। तां इह फिल्मां 90s दीआं हैगीआं ने, बहुत ज्यादा खास हैगीआं ने। तुहाडी कहिड़ी वाली फेवरेट है वो जरूर दस्सिओ, पर पहला मैं एक गीत सुनो, मैं दस्सदी उन्हां दी एक एक फिल्म बारे।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए हैं। स्टार्टिंग गल की थी ना आपा सस्पेंस थ्रिलर बॉस बार गल की है सस्पेंस थ्रिलर मूवीज दी बारी दे बारे विच ना पाए सस्पेंस थ्रिलर मूवीज दे विच जदों कॉमेडी दा तड़का लगदा तां होर खास हो जांदियां ने। सस्पेंस थ्रिलर मूवी बाजीगर आई तां सी बाजगर विच ना शाहरुख खान ने एंटी हीरो दा किरदार निभाया सी। फिल्म दी गंभीर कहानी ने दे विचकार जॉनी लीवर ने हल्की फुल्की कॉमेडी दा तड़का लगाया सी। उना दा किरदार भावें छोटा सी पर उना दी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकां दे विचकार उना नूं पहचान दवाई सी। क्राइम थ्रिलर बाजगर विच जॉनी लीवर दा स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकां नूं इक राहत दिंदा सी। इस फिल्म ने उन्होंने इंडस्ट्री विच इक मजबूत कॉमेडियन दे रूप विच स्थापित करन विच वी मदद कीती सी।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, jise janna achha hai. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: हाँ जी, मुड़ा सदुंगा दा।

जी आयनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली जिहड़ी फिल्म हैगी है ओह हुण तक सब नूं याद होनी है क्योंकि वह बहुत खास अंजलि अंजलि वाली फिल्म कुछ कुछ होता है। जी हाँ, यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है जिस विच काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी खूब पसंद किया गया। जॉनी लिवर का इस विच भी रोल है, छोटा है पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। उन्होंने फिल्म विच कॉलेज के माहौल विच हल्की फुल्की कॉमेडी का तड़का लगाया से। उन्होंने मौजूदगी नाल फिल्म के इमोशनल मूवमेंट्स के विचकार बैलेंस बनया रहा है। किदां दी लगी सी कुछ कुछ होता है, आई एम श्योर सबनों सोहनी लगी होनी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाजवाब फिल्म है। याद आ गए ना खैर थोनू जॉनी लिवर कुछ कुछ होता है विच, जे नहीं आए तो एक बार गूगल कर लो याद आ जाना फटाफट दे।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 AM ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए। एक कॉमेडी मूवी हैगी हेरा फेरी। जदो जदो कॉमेडी मूवीज की गल आती हैगी है तो हेरा फेरी का नाम ना आवे नहीं ना हो सकता। हाँ ये फिल्म तो सब तो टॉप ते रहती है। हुण जदों हेरा फेरी का नाम आया हैगा तो अक्षय कुमार सुनील शैठी ते परेश रावल का नाम ही सामने आता है, पर बहुत ही घट लोगों नूं याद होना है कि इस विच जॉनी लिवर भी सी। बिल्कुल जी जिहड़ी तिगड़ी है ना अक्षय कुमार सुनील शैठी ते परेश रावल दी तिगड़ी दे विचकार जॉनी लिवर दी अपनी ही पहचान सी। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाउण विच सफल रहे ने। वाकई वह फिल्म विच ड्रग सप्लाई करन वाले गुंडे का किरदार निभाउंदे है कि नहीं। थोड़ी सीमित स्क्रीन प्रेजेंस के बावजूद वह अपना असर छड्डण विच सफल रहिंदे ने। याद आ गई ना ड्रग सप्लाई वाली गल। जॉनी लिवर ही करते हैं।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
9: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
12: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
11: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
12: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
11: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 ते जी आरचे संदेश अलग दे नाल सी बने होया। अगला नाम जेड़ा हैगा वो है जी गोलमाल थ्री दा। गोलमाल यस, गोलमाल थ्री। रोहित शेट्टी दी इस कॉमेडी फिल्म विच वी जॉनी लिवर हैगे सी। हुण याद नहीं आया होना थानू, मैं याद करा दिनी है, कोई गल नहीं। फिल्म विच जॉनी लीवर ने एक मजेदार किरदार निभाया है। फिल्म दो परिवारों की दुश्मनी ते कॉमेडी विच नाल परे हालात ते आधारित है की है। जॉनी दे सीन फिल्म विच अलग ही रंग पाते ने। उन्होंने कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब पसंद आती है। मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद उन्होंने अपनी वक्री पहचान बनाई है। गूगल करके देखो जरा, तुहानू आ जाना है सब याद।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते चार चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। अगली फिल्म बहुत ज्यादा खास है, सुपर डुपर हिट है, काफी पुरानी है पर बहुत ही ज्यादा वाली सोहनी है। ते फिल्म है जी राजा हिंदुस्तानी। जी हाँ, आमिर खान ते करिश्मा कपूर स्टारर ए फिल्म दिल है हिंदुस्तानी। ए विच राजा हिंदुस्तानी विच जॉनी लिवर छोटे पर अहम किरदार विच सी। जॉनी लिवर ने फिल्म विच एक कॉमिक किरदार निभाया जो कहानी दे विचकार विचकार हसी दे पल लेके आंदा हैगा। फिल्म अमीरी गरीबी दे अंतर ते सच्चे प्यार दी कहानी नू दर्शांदी हैगी है। करिश्मा कपूर ते आमिर खान दी जोड़ी इस विच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगती है।

0: मैनू आए सी लैन दिल्लियों, मेरे को 11 गोली दी पक्की रफला, मेरे को सरकारी थाने मिली हुई, मोरे गोली मार दी पीछे बैठे थे नहीं, दिल मुड़ गया आके।
1: रंग का

हांजी जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहती रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 FM ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म तो बहुत खास है जी, अखियों से गोली मारे गाना कौन भूल सकता है भला। जी हाँ, उही वाली फिल्म। फिल्म का नाम है जी दुल्हे राजा। गोविंदा ते कादर खान की इस कॉमेडी फिल्म विच जॉनी लीवर ने एक यादगार रोल निभाया है। फिल्म एक होटल मालिक अते अमीर बिजनेसमैन दे विचकार टकराव की कहानी है। जॉनी का किरदार कॉमेडी नाल भरिया होया, उसके डायलॉग अज भी फेमस ने, उन्होंने ते गोविंदा की कैमिस्ट्री ना दर्शकों को खूब पसंद आती है। तुहानू किदां दी लगी सी इन्हां दी कैमिस्ट्री, ओ तुसीं सानू दस्सियो।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सन डाउनर विद रंग।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.level133 Balaclava Street, Wollongabba में। For weddings, engagements, renewal of vows or commitment ceremonies घर पर, hall या park में, book with Permanand. Call now on 04111270035. Remember, the number is 04111270035 या फिर email करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिप

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: आया क्या?
2: आएगा।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Latest updates ke liye Ultra Channels ko subscribe karein aur bell icon ko press karein.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: बेटा सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: हम जीत गए।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji no on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोए, जो मन खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोए। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो ब्रसानी 1701 एम पर मैं सताक्षी आज एक बार फिर से आपके साथ हूँ। बाहरी दुनिया में हमेशा कमी निकालने की आदत है ना हमारी, हमेशा दूसरों को गलत समझने की, उन पर उंगली उठाने की आदत है हमारी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सही नहीं है। हम सब में कहीं ना कहीं कमियां हैं, हम सब को सुधार की जरूरत है। और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आज एक बार फिर से हम साथ हैं जीवन आधार के सफर में रेडियो ब्रसवानी 1701 एम पर। तो चलिए जीवन आधार के सफर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी 1701 एम।

0: जीवन के सवालों जवाबों का सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। कई बार जब आप किसी को कुछ देते हैं, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी के काम आते हैं, तो आप में एक अहंकार भर जाता है। अहंकार उसकी मदद करने का, उसको कुछ देने का या उसकी जरूरत पर उसके काम आने का। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी की मदद कर पा रहे हैं तो उसमें भी या किसी को कुछ देकर भी हमें अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है श्रोताओं, क्योंकि ये हम नहीं जानते कि हम उसे कुछ दे रहे हैं या फिर पिछले जन्म में जो उसने हमें दिया था हम उसका कर्ज चुका रहे हैं। ये नियति है, जिससे जिससे आपने लिया है उसका कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि नमक का कर्ज भी चुकाने के लिए व्यक्ति को वापस पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं इस सुविचार के साथ और सुनते हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर जीवन आधार के अंतर्गत ये अगला गीत। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।
1: एक दिन

जीवन आधार जीवन की समस्याओं को सुलझाता हुआ और ऊपर वाले के और भी करीब लेकर जाता हुआ, जीवन के कुछ अहम संदेशों से भरा हुआ ये सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ। आइए एक अगले गीत के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते रहिए हमें और बने रहिए जीवन आधार में श्रोताओं हमारे साथ।

आज वो दौर है जब सही दिशा से ज्यादा गलत दिशा से पैसा मनुष्य के घर में आ रहा है। हेर फेर करके, इधर उधर करके या किसी को धोखा देके अगर आप भी पैसा कमा रहे हैं या आपके पास पैसा आ रहा है और आप सोचते हैं कि उस पैसे का कुछ अंश हम प्रभु भक्ति में लगा देंगे या किसी अच्छे काम पुण्य काम में लगा देंगे, किसी जरूरतमंद की मदद कर देंगे, तो यकीन मानिए उस पैसे का पुण्य या उसका फल कभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो धोखे से ही वो पैसा कमाया है। उसका पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा जिससे आपने वो पैसा कमाया है या जिसके साथ आपने धोखा किया है। इसलिए कभी भी गलत दिशा से पैसा मत कमाइए और उसे अच्छे काम में लगाकर ये मत सोचिए कि आपने अपनी गलती को सुधार लिया है या फिर अब आपने उस पैसे को दूसरों को देके, दूसरों की मदद करके या अच्छे काम में लगाकर अपने पाप को नष्ट कर दिया है। सुनते रहिए जीवन आधार हमारे साथ। आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। अभी बने रहिए रेडियो ब्रिजवाणी पर।

रेडियो प्रस्थानी पर अपने जीवन की सफलता की कुंजी को जानने की एक कोशिश जीवन आधार। इस वक्त आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्थानी पर। और इस सफर में कई खूबसूरत गानों के साथ, कई खूबसूरत भजनों और गीतों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और गीत को भी यहाँ पर सुनेंगे। हमें सुनते रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए जीवन आधार के इस खूबसूरत और बेहतरीन सफर।

बुद्ध के विचार जीवन को हमेशा सही दिशा देते हैं और इसीलिए भगवान बुद्ध की हम सभी भक्ति करें ना करें, लेकिन उनके दिखाए मार्ग पर चलने की पूरी पूरी कोशिश जरूर करते हैं। और बुद्ध ही ये कहते हैं कि कई बार जब आपके साथ ऐसा होता है कि दूसरे आपकी निंदा करते हैं, आपको आगे बढ़ता देखकर आपके बारे में गलत बोलते हैं और आप उनकी बातों से परेशान होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं कि भाई ये रास्ता बदल लिया जाए, कम से कम लोगों के मुंह तो बंद हो जाएंगे। तो कभी भी मनुष्य को, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं जैसे ही आपको सफलता मिलती है लोगों की राय आपके बारे में बदल जाती है। इसलिए कभी भी दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं ये सोचकर अपना रास्ता मत बदलिए और हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी पर जीवन आधार।

जीवन आधार सुन रहे हैं श्रोताओं, आप रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एम पर और जीवन आधार के इस सफर में सताक्षी दे रही है आपका साथ। कुछ ऐसे गीत आपको सुनवा रही हूँ जो आपको जीवन की सच्चाई से मिलवाते हैं और हर धर्म की दीवार को तोड़कर आपको हमें एक होना सिखाते हैं। इसी एकता के बल को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे इस गीत के साथ। अभी सुनते रहिए जीवन आधार और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस सांस सुमिरन करूं एक दिन मिली जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर स्मरण का मार्ग बहुत सरल है, ईश्वर को याद करना बड़ा ही आसान है और ये सतगुरु ने हमें बताया है। हमें हर सांस में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, एक दिन निश्चय ही हमें ईश्वर वो ऊपर वाला मिल जाएगा। बात को समझे, मतलब ईश्वर के नाम का स्मरण या फिर ऊपर वाले को याद करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप मंदिरों में गिरजाघरों में जाकर ही या माला जाप करके उसका ध्यान करके ही उसकी वंदना करें। अगर आप अपने काम को करते हुए जीवन की हर सांस के साथ भी उसका नाम बुलाते हैं ना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप जब भी वक्त मिले उसके नाम का जाप करते हैं या उसका नाम लेते हैं या उसका ध्यान भी करते हैं, तो भी वो ईश्वर भक्ति ही कहलाती है, वो भी ऊपर वाले के दरबार में अर्जी लगाना ही कहलाता है। बहुत गहरी बात है, इसे सोचिए और बने रहिए हमारे साथ। रेडियो ब्रजवाणी पर सुनते रहिए जीवन आदि।

तो श्रोताओं, भक्तजनों, ये था आज एक और जीवन आधार पर सताक्षी का आपके साथ साथ, जिसमें आज हमने फिर से कुछ जीवन के तारों को छेड़ा और आपको आपकी ही जिंदगी से जोड़ने की एक और छोटी सी बेहतरीन सी कोशिश की। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफर जरूर अच्छा लगा होगा। कल जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ सताक्षी फिर से मिलेगी आपसे जीवन आधार में। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन के साथ प्रोग्राम चानी के सफर में। और आशा करती हूँ इस सफर में आप सभी को आज भी बहुत ही काम वाली चीज आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है और शायद बहुत लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है। वो क्या बातें हैं, क्या आज का टॉपिक है, जानेंगे इस गीत के बाद। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिसवानी में।

स्वागत है, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारे घर पर कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी क्रीम जब एक्सपायर हो जाती है तो ऑब्वियस वाली बात है हम उसको फेंक देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी फेंक देते हैं? ऑब्वियस बात है, हम फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो यही कि हाउ टू यूज एक्सपायर्ड क्रीम्स। जी हाँ, वो किस काम के लिए हमारे लिए काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक्सपायर्ड क्रीम को बेकार कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम खराब हो चुके लोशंस हो या क्रीम हो उसको घर के कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस खबर में एक्सपायर्ड हो चुकी क्रीम्स को किस तरह आप यूज कर सकते हो, उसके करने का तरीका मैं आज आप बताऊंगी आप सभी को, वो क्या है, कैसे हमने उसका इस्तेमाल करना है। अब ये मत सोचेगा कि मैं अब फेस में उसको लगाने के लिए बोलूंगी, नहीं जी, लेकिन ये और कामों के लिए यूज आ सकता है। वो कौन से काम है जानेंगे थोड़ी ही देर बाद। आप सुनिए ये गीत।

हाँ जी, स्वागत है आप सभी का रेडियो ब्रिस्वानी में। दोस्तों, अगर आपके घर पर लेदर के कोई भी पुराने शूज, बैग या बेल्ट्स हैं, तो एक्सपायर हो चुकी जो क्रीम होती है वो हमारे काम आ सकती है, क्योंकि ये आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल क्या होता है, लेदर जो है जैसे जैसे ओल्ड होता रहता है वैसे वैसे उसकी जो चमक है वो फीकी पड़ने लगती है। आप उसे फिर से नए जैसा चमकदार बनाने के लिए थोड़ी सी क्रीम, जो एक्सपायर्ड क्रीम है, वो ले सकते हैं। उसको आपने कपड़े में लगाना है और फिर उस कपड़े से उस लेदर वाली आइटम को आपने रगड़ना है। इससे लेदर फिर से मुलायम और चमकदार दिखने लगेगा। तो देखा कितनी काम आती है हमारी एक्सपायर्ड क्रीम। तो ये आज का पहला वाली बात है कि ये तो इसके लिए, लेदर्स के लिए काम आएगी, लेकिन ये और किन चीजों के लिए काम आएगी, जानेंगे इस गीत के बाद। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

0: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब बात करते हैं जिद्दी स्टिकर्स की। जी हाँ, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कोई स्टिकर्स ऐसे होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, जो उसका निशान उतरता ही नहीं है अगर कहीं पे भी लग जाए। अगर दोस्तों आप नई बॉटल लेते हो या फिर क्रॉकरी लाते हो, उस पर लगे जो चिपचिपाहट स्टिकर्स होते हैं उसको हटाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। या तो हम ड्रायर से उसको पूरा ड्रायर करके फिर हम उसका जो चिपचिपापन है वो निकालते हैं, या उसको हम स्टील वूल से रगड़ते हैं, या व्हाटएवर जो भी स्क्रब कर है वो करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो एक्सपायर्ड क्रीम होती है ये हमारे काम आ सकती है। वो कैसे? ऐसे में आपने क्या करना है, थोड़ा सा लोशन लेना है, उसको आपने उसमें लगा के रखना है और फिर आपने इसको धीरे धीरे रगड़ना है। आप देखेंगे इस स्टिकर के जो निशान है वो बहुत ही आसानी से साफ हो जाते हैं और शीशा भी चमकने लगता है ना काम की चीज। और किस चीज के लिए काम आएगी जानेंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।
1: बागों में बाहर है, है? मैंने पूछा बागों में बाहर है,
2: है?
1: कदमों की निखार है, तो तुमको मुझसे प्यार है।

वेलकम बैक है जी। आइए अब बात करते हैं लकड़ी के फर्नीचर की। जी हाँ, पॉलिश को तो आप सब जानते होंगे कि हम जब कोई भी फर्नीचर फीका पड़ जाता है तो उसको पॉलिशिंग के लिए हम फिर से पॉलिश करने के लिए दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, टेबल हो, कुर्सी हो या फिर अलमीरा हो, उस पर हल्का सा लोशन लगाएंगे आप और कपड़े से उसको पोंछने लगेंगे, उसमें आप देखेंगे चमक आने लगेगी। जी हाँ, इससे धूल भी हट जाती है और फर्नीचर में फिर से चमक भी आ जाती है। वैसे ही एक और बहुत ही प्यारी टिप है जो कि है जिप की। आपने देखा होगा कभी कभी जो जिप है वो फंस जाती है, यानी कि चाहे वो बैग्स की जिप हो, चाहे वो जीन्स की हो, या आप कोई भी जो कपड़ा है वो अगर आप वेयर कर रहे हो उसकी कोई जिप हो, तो क्या होता है कि ये क्रीम जो है आपकी जिप को स्मूथ करने में भी बहुत काम आती है। अगर बैग या जैकेट की जिप बार बार अटकती है तो उस पर अगर आप थोड़ा सा लोशन लगा देते हैं तो ये लुब्रिकेंट की तरह ही काम करता है और जिप आसानी से चलने लगती है बिना किसी बिगड़े हुए काम की। जी हाँ, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक है जी आप सभी का। तो आइए अब जाते जाते एक और आपको बात जरूर और काम की बता दें जाए। दोस्तों, दरवाजा जब चूं चूं की आवाज करने लगता है, कई बार घर में लगे जो दरवाजे हैं उसके जो कब्जे होते हैं, ठीक है, तो वो आवाज करने लगते हैं या फिर चूं चूं की आवाज आने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा इरिटेट करते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा लोशन लीजिए और उसको कब्जों पर लगा दीजिए, इससे आवाज भी कम हो जाती है और दरवाजा भी स्मूथ चलने लगता है। जी हाँ, तो ये आज मैंने आपको बहुत ही फायदे वाली बात बताई है। अगर आपको फायदा जरा सा भी लगा है तो इसको आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त आरजे जानी जैन को इजाजत और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मस्वानी 1701 एम आई। सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान बेनकाब, अमेरिका ने खोली आसिम मुनीर के सीजफायर के दावों की पोल। अमेरिकी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से बड़े पैमाने पर संपर्क साधा था। जी हां, अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हाल ही में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। इन दस्तावेजों के अनुसार पिछले साल मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राजनेताओं, रक्षा अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितधारकों के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क साझा था। जेल से रिहा हुए थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनावात्रा 8 महीने रहे बंद। थाईलैंड के प्रभावशाली पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें पैरोल पर अपनी 1 साल की सजा के शेष 4 महीने पूरे करने की अनुमति दी गई है। अदालत के उस फैसले के बाद थाकसिन को 8 महीने जेल में बिताने पड़े, जिसमें कहा गया था कि जेल से बचने के लिए उन्होंने गलत तरीके से अस्पताल में रहने का बहाना बनाया था। शिप पर सवार अमेरिकी नागरिक मिला हंटा वायरस से संक्रमित, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को बाहर निकाला। हंटा वायरस से प्रभावित लग्जरी क्रूज शिप एमवी होर्डिंग्स से निकाले गए एक अमेरिकी नागरिक में वायरस के एंडीज स्ट्रेन की हल्की पुष्टि हुई है, जबकि एक अन्य अमेरिकी यात्री में इसके हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों ने बचाव अभियान और क्वारंटीन के प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने बताया कि डच झंडे वाले इस जहाज पर सवार सभी 17 अमेरिकियों को एयरलिफ्ट करके अमेरिका ले जाया जा रहा है। आइए जुड़ते हैं अब भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। पुर्तगाल ने अभय राणा के प्रत्यर्पण में किया सहयोग, भारत ने जताया आभार। भारत ने अभय राणा के प्रत्यर्पण में सहयोग के लिए पुर्तगाल का आभार व्यक्त किया है। सरकार ने इस कदम को विदेश में रह रहे वांछित अपराधियों को वापस लाने के अपने निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: आप सभी का स्वागत है रेडियो बिजबानी पर। बहुत सा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और अमिता आपको भी नमस्ते।
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।

गुड मॉर्निंग अजी, कैसे हैं? क्या हाल है? सब जिंदगी में चंगा, बढ़िया, मजेदार है कि नहीं है? पे ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कह देते हैं कि अच्छे हैं और अंदर ही अंदर अच्छे ना हो? हाँ, देखिए, हम ना वो डॉक्टर हैं जो दूर रहते हैं, लेकिन आपकी बीमारी हम पहचानते हैं। हमें पता है कि कब मूड अच्छा है, कब नहीं है, इसलिए झूठ मत बोलिएगा भाई। अच्छे हैं तो अच्छे रहिए और हमें बताइए कि अच्छे हैं। और अगर लाइफ में कुछ ऊपर नीचे है तो यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि सब कुछ बेहतर होगा, है ना? क्योंकि इंसान का भरोसा है जो गलत को भी सही कर देता है। और इसी सही गलत के फेर में ना पड़ते हुए हम सब कुछ अच्छा है ये मानकर शुरू करते हैं आज के ब्रेकफास्ट शो को। दोस्तों, मैं हूं सताक्षी आपके साथ और लेकर आई हूं आपके लिए एक बार फिर से हमारा मॉर्निंग शो इट हैपेंस। जी हाँ, आज फिर से आपके साथ कुछ बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग ट्रैक्स को बांटूंगी और जिंदगी के वो एहसास जो इस सुबह आपके लिए जानने और समझने बहुत जरूरी हैं, उन पर भी जरा बात होगी। आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। अभी सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। इट हैपेंस में ये वक्त है अभी उन लोगों के साथ जरा गुफ्तगू करने का जिनके लिए आज का पल आज का दिन बहुत ही हसीन है। जी हाँ, सबसे पहले बात कर ली जाए उनसे जिनका आज बर्थडे है। तो भाई देखिए, जिंदगी में 365 दिनों में, मतलब लाइफ के जो साल के 365 दिन होते हैं उनमें एक दिन ऐसा आता है जब आपका बर्थडे होता है और इस दिन आप हो जाते हैं स्पेशल पर्सन जिसको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, बधाइयां मिलती हैं। तो भाई हमारी रेडियो प्रसवानी की भी बधाई एक्सेप्ट कीजिए और हम विश करते हैं कि ये पल जो है ये इतना शुभ हो कि आपकी पूरी जिंदगी को शुभ कर दे। इस वक्त जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हें विश करूंगी और आप एक दूसरे के साथ यूं ही कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। याद रखिए कि हस्बैंड और वाइफ का मतलब होता है कि एक साथ चलना। अगर कोई एक पीछे चलता है या कोई एक ज्यादा आगे चलता है तो फिर जिंदगी लड़खड़ाने लगती है। जब तक आप साथ हैं तब तक बात है। और जिनकी आज जिंदगी में कुछ खास होने वाला है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस रेडियो प्रसवानी पर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। इस मॉर्निंग आपके साथ फिर से हाजिर हूँ कुछ बहुत ही जबरदस्त बातों के साथ। देखिए, लाइफ जो है बेसिकली एक ब्लैंक कैनवास बनकर आती है हर मॉर्निंग हमारी लाइफ में, है ना। हाँ, और इस जिंदगी का ये जो ब्लैक कैनवास है जो हर सुबह आपको मिलता है, इसमें हर सुबह आपको अपनी पसंद के रंग भरने हैं। भाई वो रंग जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वो प्यार के रंग हो सकते हैं, वो सक्सेस के रंग हो सकते हैं, वो जिंदगी जीने के रंग हो सकते हैं, वो ग्रोथ के रंग हो सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं और कैसे रंगों से इसे सजाते हैं। तो अपनी इस ब्लैंक कैनवास पे वो रंग बिखेरिए जो आपकी जिंदगी में आपको चाहिए। एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक सताक्षी के साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

हैपेंस जी हाँ, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। इस जिंदगी में, हमारी लाइफ में एक चीज ऐसी है जिसके बिना लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इसकी शर्त पर अगर हमसे कहा जाए कि भाई कोई रिश्ता तुम्हें मिल जाएगा, दुनिया भर की दौलत मिल जाएगी, घर गाड़ी कुछ भी, सक्सेस कुछ भी तुम्हें मिल जाएगा, भाई मैं तो ये चीज नहीं दे सकती अपने आप से। और ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रख के अगर आपको कोई भी रिश्ता मिलता है, फिर चाहे आप किसी से रिलेशनशिप में हो और आपसे कहा जाए कि भाई आपको इस रिश्ते में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सो भाई मुझे तो नहीं लगता कि वो रिश्ता कभी भी आपके लिए हो सकता है, जेन्युइन हो सकता है, लॉयल हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी मैं देखती हूँ लोगों में कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट? और ऐसे लोग आगे जाकर जरूर पछताते हैं। तो अपने आप के साथ आप किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करें, बट सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके आत्मसम्मान के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है जी? तो ख्याल रखिए, और चलिए एक और ट्रैक सुनवाती हूँ आपको इसी बात पर। स्टे ट्यून्ड, इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। सताक्षी को सुनते रहिए और सुनते रहिए ये बेहतरीन मॉर्निंग ट्रैक्स।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: वेलकम बैक इट हैपेंस में, आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और इट हैपेंस में दोस्तों ये वक्त है आज की गानों की हैट्रिक का। आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स लेकर मैं हाजिर हूँ, तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला ट्रैक कौन सा है।

जी हाँ, रेडियो प्रसवानी पर आपके मॉर्निंग शो, आपके ब्रेकफास्ट शो को आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आइए अपने ब्रेकफास्ट शो में जरा आगे लेकर चलते हैं आपको गानों की हैट्रिक के इस लास्ट ट्रैक के साथ, और इसके उस पार होंगी आपके साथ और भी प्यारी और खूबसूरत बातें। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वेलकम बैक. इट हैपेंस. जी हाँ, सताक्षी के साथ इसी सफर को आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं आप ही की लाइफ के कुछ बेहतरीन लम्हे. मैम, जानते हैं कि ये लम्हे जो हैं ये आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमारी जिंदगी का वो वक्त जो हमारी जिंदगी में एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार होता है, जिस दिन के साथ हमें लगता है कि यार जिंदगी में कुछ चेंज आ सकता है, या जिस दिन के साथ हमें लगता है कि लाइफ थोड़ी सी बदल सकती है, वो पल, वो लम्हा जिंदगी का बहुत ही खास पल और बहुत ही खास लम्हा बन जाता है. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर मॉर्निंग जबरदस्त होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके लिए क्या लेकर आने वाली है. मे बी कोई सरप्राइज, मे बी कोई गुड न्यूज, मे भी कोई बहुत अच्छी खबर, है ना. देखिए, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है. आपकी लाइफ में क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा. इसलिए अच्छा सोचिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर.

मत डर कि दौर कठिन है या लोग क्या कहेंगे, मत डर कि दौर कठिन है या लोग क्या कहेंगे, तेरी सीरत को तेरी तकदीर खुद इम्तहान देगी, तेरी सीरत को तेरी तकदीर खुद इम्तहान देगी। और इतना असर छोड़ अपने हुनर का इस जमी पर, इतना असर छोड़ अपने हुनर का इस जमी पर कि खुदा तेरी किस्मत से पूछे कि बता तेरा अगला अरमान क्या है। वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ आप रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। यू नो, अपनी किस्मत को अगर हम कभी पलट सकते हैं, लोग कहते हैं ना किस्मत में लिखा था ही हो गया, किस्मत को अगर आप किसी चीज से पलट सकते हैं तो वो है आपके कर्माज, यानी कि आपकी मेहनत। आप कितने पैशन, कितनी मेहनत से कर्म करते हैं, आपकी किस्मत को बदलने की ताकत उनमें होती है। खुदा को भी, जिसने किस्मत लिखी है, उसको भी झुकना पड़ता है आपकी मेहनत के आगे। तो आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपका जो हुनर है, उन्हें और निखारिए, उस पर ध्यान दीजिए और उन्हें इस काबिल बनाइए, उनको इतना पॉलिश कर दीजिए कि आपके पैशन में, आपके कर्माज में या आपकी मेहनत में कोई कमी ना रह जाए। अपना 100% दीजिए, बाकी जो होगा उसे ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। सदाक्षी के साथ सुनते रहिए, इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।